एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें, जलवायु अनुकूल खेती सुनीता अग्रवाल से। खेती की बातें में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन और कृषि विकास। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक कृषि कमाई में 15-18% तक की कमी और गैर सिंचित क्षेत्रों में 20-25% तक की कमी आ सकती है। देश की आबादी के 58% हिस्से की कमाई का प्राथमिक स्रोत खेती है। कृषि और प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित उद्यान न केवल भारत बल्कि ज़्यादातर विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति का आधार है। कृषि क्षेत्र और इसमें शामिल खेत, फसल, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पॉलिट्री संयुक्त राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों, खास करके शून्य भूखमरी, पोषण और जलवायु कार्रवाई तथा अन्य से जुड़े हुए हैं। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम चुनौती जलवायु परिवर्तन है और इसे लगातार सूखा, चक्रवात, बाढ़, लू, शीतलहर और समुद्री के खारे पानी का तटीय इलाकों में प्रवेश जैसे प्रभाव देखे जा रहे हैं। साल 2030 तक तापमान में 1 से लेकर

2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जो पैदावार पर गंभीर प्रभाव डालने की आशंका है। उच्च तापमान फसल की अवधि को छोटा, प्रकाश संश्लेषण में बदलाव, फसल श्वसन दर में इजाफा और कीटाणुओं की आबादी को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन पोषक तत्वों को जैविक से गैर जैविक में बदलता है, उर्वरक इस्तेमाल की क्षमता को भी प्रभावित करता है, साथ ही मिट्टी से वाष्पन उत्सर्जन को भी बढ़ाता है, जिससे आखिरकार प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है। जलवायु परिवर्तन का असर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फसल, पानी और मिट्टी पर पड़ता है, क्योंकि ये पानी की उपलब्धता, सुखाड़ की तीव्रता और सूक्ष्म जीव की आबादी, मिट्टी में मौजूद जैविक तत्वों में कमी, कम पैदावार, मृदा अपरदन के चलते मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट आदि को प्रभावित करता है। कृषि पद्धतियां पूरी तरह मौसम की स्थितियों पर आधारित है। उच्च तापमान के कारण पौधे में पानी की कमी होता है। सरकार, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई सक्रिय नीतियां व कार्यक्रम शुरू किए हैं और जिन्हें ग्रामीण स्तर पर लागू भी किया जा रहा है, जिनमें जलवायु लचीला कृषि मुख्य है। जलवायु लचीली कृषि एक दृष्टिकोण है जिसमें जलवायु परिवर्तन में भी फसल और पशुधन उत्पादन के जरिए दीर्घकालीन उच्च उत्पादकता और कृषि आय प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। ये पद्धति आने वाली पीढ़ी के लिए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए गरीबी और भूखमरी को कम करेगी। CRA पद्धति मौजूदा स्थिति में तब्दीली कर दीर्घकालीन तरीके से स्थानीय से वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन को बरकरार रख सकती है। तकनीकी तक सुविधाजनक पहुंच और इस्तेमाल, पारदर्शी व्यापार, संसाधन संरक्षण तकनीकों का अधिकाधिक इस्तेमाल व फसलों व पालतू मवेशियों द्वारा जलवायु दबाव को आसानी से अपना लेना जलवायु लचीली पद्धति का परिणाम है। बहुत सारे देश टकराव व आपदाओं का संकट झेलते हैं, लेकिन अपर्याप्त खाद्य भंडार, आधारभूत खाद्य पदार्थ के दाम में उतार चढ़ाव, कृषि ईंधन की भारी मांग और मौसम में आकस्मिक बदलाव के चलते खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है। सभी कृषि और गैर कृषि स्रोतों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को प्राथमिकता देनी होगी। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल इस दिशा का एक नीतिगत हस्तक्षेप होगा, जिसकी सराहना दुनिया भर में की गई है। साझेदारों में भरोसा मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है और जलवायु परिवर्तन व स्थानीय स्तर पर इससे पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। देश भर में जलवायु लचीली खेती करना इस समय की जरूरत है और इसके लिए उचित नीति दिशा निर्देशों का स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्थानीय कृषि अभ्यासों का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की जानकारी यहीं तक।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

मनुष्य में यदि मानवता नहीं है तो वह मानव नहीं है। मनीषियों ने मनुष्य को मनुर्भव मनुष्य बनने की बात कही है। एक सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों का सम्मान करे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, छल कपट द्वेष से परे परहित पर काम करे। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसे सोचने समझने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दी है। मानवीय गुण ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। वह अच्छा बुरा सब समझ सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करता है वह न तो सफलता को प्राप्त करता है, न ही शांति, न ही मोक्ष। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो क्षमाशील शांत चित्त मृदु व्यवहार मधुर वाणी वाला होता है वह सत्पुरुष कहलाता है। सज्जनता से भरा इंसान हर परिस्थिति में संयमित होता है। वह अपने आचरण से लोगों का प्रिय बन जाता है। मनुष्यता की पहली शर्त सज्जनता सहृदयता मानी जाती है। सहृदय व्यक्ति परोपकारी दयालु विश्वासी होता है। वह किसी को धोखा नहीं देता है, हमेशा दूसरों का भला ही सोचता है। किसी के बुराई का उत्तर भी वह अच्छाई से ही देता है। निस्वार्थ भाव से औरों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति ही सज्जन है। सज्जनता कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, वह स्वतः ही दिख जाती है। किसी व्यक्ति का आचरण आचार व्यवहार उसकी सज्जनता को दर्शाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती हैं। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से समाप्त होता है और यही शाश्वत सत्य है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन जीते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार झरना बहुत शोर मचाता है और सागर गहरा और शांत रहता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत चित्त बना रहता है। क्रोध के विषय में बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रखने के समान है। इसमें व्यक्ति स्वयं जलता है। कोई भी बहुत बोलने से कुछ नहीं सीख पाता है। समझदार वही है जो धैर्य वाला क्रोध न करने वाला निडर होता है। इसलिए धैर्यवान सहृदय दयालु परोपकारी बने और यही सज्जनता के गुण है। सज्जनता को दर्शाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपना अच्छा आचरण करते रहिए, आपकी सज्जनता स्वतः प्रकट हो जाएगी। यही संदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़, डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासी

वासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां। आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं। सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गांवों के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों के विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा अनुराधा सिंह से। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता अनिद्रा कारण एवं उपचार। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुंदरम श्री हर्ष रांची से और इनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: भागम भाग जिंदगी में हर तरफ हम तनाव से घिर जाते हैं। हमें चारों ओर

0: सिर्फ अपना काम दिखता है और काम के बोझ के तले हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसे में हम भूलते हैं पर्याप्त समय अपने नींद के लिए। सही समय पर हम सो नहीं पाते हैं, सही समय पर हम उठ नहीं पाते हैं और कितना हमें समय सोने के लिए देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। होता क्या है, हम थकान महसूस करते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस। तो एक व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है क्या कारण है इसका और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष।
1: नमस्कार,
0: साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, अनिद्रा एक कॉमन बीमारी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत लोग गोलियों का सहारा लेते हैं जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए?
1: अनिद्रा या इंसोमनिया, इसको हमारे मेडिकल भाषा में या अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमनिया, नींद ना आना, इसमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको उनिदापन कहते हैं या निंद्रा लोप भी कहते हैं या निंद्रा अभाव भी कहते हैं। ये सारे नींद नहीं आने के अलग अलग नाम हैं। हम सब जानते हैं अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है शांतिपूर्ण नींद ही स्वास्थ्य का आधार है। हम लोग तकनीकी बहुत तरक्की कर गए हैं, अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये तकनीकी तरक्की किस कारण हुई? अपना स्वास्थ्य और नींद को गंवाकर। तो ऐसी तरक्की क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी कारण भी अपना स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहिए, जब शिशु या बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं मैक्सिमम समय वो सोए रहता है 18 से 20 घंटा, सिर्फ खाने के लिए, थोड़ा देर के लिए पीने के लिए उठता है फिर सो जाता है। तो उन लोग 18 से 20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं? उस सोने के दौरान में उनका मानसिक विकास होता है। तो हमारे यंग लोगों में, बड़े लोगों में सोना कम से कम 6 से 10 घंटे सोना जरूरी है। कहते हैं 8 से 10 घंटे सोए तो आपका शरीर का संपूर्ण विकास होगा, शरीर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और शरीर अपने हीलिंग की ओर, अच्छे की ओर, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेगा। किसी किसी लोगों में देखा जाता है 6-7 घंटे भी सो के स्वस्थ रहते हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, कई लोगों को 8 से 10 घंटे, तो ऑन एन एवरेज कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए या कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो भरपूर नींद लेना ही चाहिए, वरना आप बहुत सारे मानसिक रोगों के शिकार आगे चल के हो सकते हैं।
0: सही से नींद हम नहीं निकाल पाते हैं, सही से हम सो नहीं पाते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है?
1: पहले हमको जानना है कि नींद नहीं आने के मरीज कैसे आपको लक्षण लेके आएंगे। कुछ लोग पढ़ें कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे नींद शुरू में नहीं आती है, लेकिन एक बार सो जाता हूँ तो ठीक से आती है। कई लोग कहता हूँ सो तो जाता हूँ सर, लेकिन रात में बीच में उठ पाता हूँ, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं नींद को। कई लोग सो भी जाते हैं, कुछ हद तक मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो नींद नहीं आने के ऑनसेट मेंटेनेंस और तुरंत उठने की बीमारी होती है। कई लोग इसके बाद कहते हैं सर मैं पूरा सोता हूँ फिर भी हमको थकान महसूस होती है। ये सब इंसोमनिया के ही लक्षण में आते हैं जो मरीज आके शिकायत करता है। मरीज शिकायत करने के बाद अगर ये नहीं, अगर इसका ध्यान दिया जाए तो ऐसे मरीज एंग्जाइटी और डिप्रेशन और तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इन सब के निदान के लिए आपको चिकित्सक परामर्श लेने की अत्यंत आवश्यकता है।
0: कुछ व्यक्ति स्वतः ही दवा लेकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, वो कितना हद तक जायज है?
1: ओवर द काउंटर मेडिसिन सरासर गलत है, खासकर नींद की मेडिसिन ना लें। अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे दुकान वाले कभी भी किसी मरीज को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद के दवा नहीं देती है। ऐसा नहीं मेट्रो में, ऐसा अपने झारखंड में भी कई दुकान पे जाइए, आप मांगिए आपको नींद की दवा नहीं देगी। नींद की दवा लेना क्यों जरूरी है? अगर कोई आदमी प्रॉपर तरीके से सोता नहीं है तो कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। तो कभी कभी किसी को शॉर्ट टर्म इंसोमनिया, शॉर्ट थोड़े दिन के लिए अनिद्रा जो दिनों से 2-3 हफ्तों तक रहता है, दीर्घकालीन अनिद्रा जो क्रोनिक इंसोमनिया कहते हैं, जो महीनों सालों भर रहता है। तो शॉर्ट टर्म इंसोमनिया जो साइकिल चेंजेस, किसी का ड्यूटी शिफ्ट हो गया, प्लेन से एक जगह से इधर गए, जेट लैग हो गया, जिसमें शॉर्ट टर्म इंसोमनिया होती है, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी किसी को चोट लग गई, पेन के कारण हो गया, तो शॉर्ट टर्म इंसोमनिया उपचार करने से स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक ये जो दीर्घकालीन इंसोमनिया होती है, उसमें लगातार अगर वर्क शिफ्ट हो गया, उसमें कभी अच्छी नींद आ रही, कभी ख़राब नींद आ रही, कभी अच्छी, तो साल भर उसको नींद की साइकिल डिस्टर्ब रहती है। इसको वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ स्लीप कहते हैं, जिसके मल्टीपल कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः नेजल एलर्जी, साइनोसाइटिस अगर नाक का इन्फेक्शन रहा, GI रिफ्लेक्सेस हुए, हाइपरथायरॉइड के मरीज को, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसनिज, ज्वाइंट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सांस के मरीज को, और कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में भी नींद की, क्रोनिक नींद की प्रॉब्लम होती है। तो नींद की प्रॉब्लम में ओवर द काउंटर दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से मिलें, वो आपको तरह तरह के तरीके बताएंगे जिससे आप प्रॉपर नींद ले सकें। सर्वप्रथम हम नींद लेने जाते हैं तो हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो अगर आप एक्सरसाइज या शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपको सही नींद आएगी। और एक और नया कंसेप्ट अभी डेवलप किया है कि पुअर स्लीप हाइजीन, मतलब सोने वाले जगह को हम स्लीप के अनुसार लाइट नहीं रखते हैं, ज़्यादा लाइट रखते हैं, शोर शराबा रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हैं, टीवी चलते रहेगा, ऐसे माहौल में नींद नहीं आएगा। कई लोग सोने से पहले नहा लेते हैं तब भी नींद नहीं आएगा, चाय कॉफ़ी धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब भी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो इन सब से हम बचें। कभी कभी रात में अगर 20 मिनट से ज़्यादा नींद टूट गया, उठ गए, तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, दूसरे चीज़ में लगाएं, कुछ पढ़ने लगे, नहीं लगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करने लगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आपको नींद स्वतः आ जाएगी। तो ये सब बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंज करके हम अपने एंग्जाइटी को और नींद की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, तनाव का नींद से गहरा संबंध है। कहते हैं किसी व्यक्ति को तनाव हो गया या हम तनाव से घिर जाते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है। तो ऐसे समय व्यक्ति क्या करे, किस तरह के उपाय अपनाए, क्या क्या जतन करे वो कि उसको सही से नींद आए?
1: आपने सही समय पूछा। आज की समस्या तनाव और स्ट्रेस की समस्या है। दिन चूहे की दौड़ है, हम लोग 99 के चक्कर में भागे जा रहे हैं। ये चक्कर कब खत्म होगा पता नहीं, यही तनाव को जन्म देता।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में अनिद्रा कारण में उपचार, डॉक्टर सुंदरम श्री हर्ष रांची से। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
1: सोने का जगह जैसे मैं बताया, शांत और आरामदायक।
3: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यद् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढ़तरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्ट मंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
4: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
3: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् भारत

0: आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रान्तिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमाप्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिकरीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणम् अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है

0: की सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. India and Australia have adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: लेटर ब्रीफिंग द मीडिया, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a short-term, long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: as Prime Minister Narendra Modi

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है एफ एम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:15 पर सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम जिरगा भगतम साथियों की आवाज़ में। हरिहरन की आवाज़ में आप सुनेंगे सुगम संगीत 7:45 पर। 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का समय होगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। गीत गुंजन का समय होगा 8:45 पर। जोहार आप सुनेंगे 9:00। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 का समय होगा दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार का। हिंदी में समाचार का समय होगा 10:05 पर। 10:10 पर हम चलेंगे मुंबई जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में हेलो फरमाइश। 11:00 विविध भारती में रंग तरंग यादों की महफिल का समय होगा 12:00। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर। 1:10 पर हम चलेंगे रांची जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुरीला सफर। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा दिल्ली से 2:00। 2:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। विविध भारती में आप सुनेंगे सदाबहार नगमे 2:30 पर मुंबई से। 2:55 पर हम चलेंगे रांची जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3:00 का समय होगा मुंबई से विविध भारती का। 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 4:02 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में हेलो फरमाइश। 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

5:35 प्रातः सुनेंगे घर आंगन महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी ग्रामीण सभा का समय होगा शाम 6:30 पर। 7:00 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:10 पर आप सुनेंगे रांची से जिले में आजकल एक रंग आप सुनेंगे 7:15 पर। उड़ान कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे रोजगार से जुड़ी बातें 7:45 पर। 8:00 का समय होगा चित्रपट संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे महफिल कव्वाली नगमों का ये कार्यक्रम। 8:45 पर हम चलेंगे दिल्ली जहां सब सुनेंगे हिंदी में समाचार अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9:00। 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार। 9:30 पर हम चलेंगे मुंबई जहां सब सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार। 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का। 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार अंग्रेजी में समाचार का समय होगा दिल्ली से 11:05 पर। और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम प्लस जिरगा भगत एवं साथियों की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे पलाश लोकगीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा, हरिहरन की आवाज़ में सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

0: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात

0: में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट। यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सईद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम

0: खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: to finally come home with Australia, writes the Indian Express. Pakistan-occupied Kashmir is on the boil, with the Joint Awami Action Committee pledging to avenge Pakistani atrocities, reports the Asian Age. India Meteorological Department is extensively quoted in dailies on the latest news on monsoon. Monsoon has covered the entire country a day later than normal, announces IMD, is the headline in the Hindu. Deficit falls to 14%, writes the Times of India. And finally, the Pioneer reports that India may soon get a common police uniform after 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shalun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France storm into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in fourth T20 international to take 3-0 lead in five-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलको और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स ने दूसरे और आखिरी दिन झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 14 महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए राज्य में करीब 99,639 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन निवेशों से जिंदल स्टील और गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा राज्य में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
3: इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है। और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी मुलाकात की और राज्य में विश्व स्तरीय स्किल सेंटर, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में दीर्घकालीन साझेदारी और निवेश बढ़ाने की गहरी रुचि व्यक्त की है। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बल ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर करीब 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया। इस मामले में 4 FIR दर्ज कर कई वाहन जब्त किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र ने टेबल्स ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिले को मिलाकर एक संयुक्त विशेष टीम बनाई गई है। डीजीपी ने अवैध हथियारों की तस्करी रोकने, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच और लगातार गश्त करने पर

0: जोर दिया है। रांची में ऐतिहासिक रथ मेला की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं निश्चित करने का निर्देश दिए। यह पारंपरिक रथ यात्रा आगामी 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है।
1: लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रथ यात्रा आएगी और फिर 10 दिवसीय यहाँ रथ यात्रा प्रारंभ होगी, फिर घुटी मेला होगा। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोग यहाँ आते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके आवागमन, उनके लिए शौचालय, हर तरह की व्यवस्थाएं खड़ी हो।
0: रांची महिला महाविद्यालय के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महुआ मांझी ने शिक्षा को जागरूक नागरिक और सक्षम नेतृत्व के निर्माण का माध्यम बताया। उन्होंने शिक्षा में डिग्री के साथ साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुशील प्रसाद और एमडी साहिद अलम ने जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पहुंचे इन अधिकारियों ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों राजनयिकों ने संस्थान के विश्व स्तरीय शोध और औद्योगिक नवाचार की सराहना की। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, जेएसएलपीएस और आवास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। बैठक में मानव दिवस सृजन, कूप निर्माण और लंबित भुगतानों के त्वरित निष्पादन पर चर्चा हुई। इस दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के ओरमांझी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। सांसद ने अधिकारियों को म्यूटेशन प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व कार्यों का समय पर निष्पादन करने तथा पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
2: जमीन दलाल हैं चाहे माफिया हैं, पदाधिकारियों से मिली भगत करके गलत तरीके से रिपोर्टिंग करा करके वो जमीन को हस्तांतरण करने का काम करते हैं, दाखिल रजिस्ट्री कराने का काम करते हैं, जिसका परिणाम देर सवेर ग्रामीण को बहुत खराब भुगतना पड़ता है। इसलिए आए थे एक अंचल पदाधिकारी से कहने के लिए कि जिनका खर्ता प्लॉट में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटि को जिस किसान का जिस ग्रामीण का शिकायत है उसको तुरंत ठीक करने का काम कराए।
0: रांची के शौर्य सभागार में कल 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीजीपी तदाशा मिश्रा शामिल हुए। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोनिता के ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है। विभाग का लक्ष्य लोगों को बेहद सहज तरीके से पासपोर्ट उपलब्ध कराना है।
3: 2012 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मूल एम था डिजिटलाइजेशन तकनीकीकर। तो आज आप देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटलाइज्ड है और आज 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर।
0: रांची नगर निगम ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। रातू रोड से हरमू चौक तक सड़क और फुटपाथ से अवैध दुकानों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया। निगम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। रांची के नेपाल हाउस प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। अनाय खलको और विशाखा थापा ने स्वर्ण वायु

सिद्दीकी ने रजत तथा कृपा राणा ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार द्वारा 14 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य में 99,639 करोड़ का निवेश होगा, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिल्डर के यहां लाखों की चोरी करके दूसरे घर में घुसे गार्ड हवाई फायरिंग से भागे। हिंदुस्तान लिखता है, रांची के कारोबारी की 85 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। दैनिक जागरण के शब्द हैं, जेएससीए स्टेडियम में भगदड़ व तोड़फोड़ मामले में 100 से अधिक 150 अज्ञात पर प्राथमिकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचिक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलखो और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आज सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अलग अलग का ये गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत गुंजन और अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिंदूर का ये गाना मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म तड़प का ये गाना।

जोहार पला मुँह सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंगे वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं कठोर परिश्रम और धैर्य से ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गाना।

0: जोहार पलामू।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 26 डिग्री। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सचेत रहें। अभी जिस तरह का मौसम है और इस मौसम में हमें फल तो मिलते ही हैं, हालांकि हर मौसम में हमें फल मिलते हैं, मगर कुछ फल ऐसे होते हैं जो मौसम के अनुकूल मिलते हैं। और देखा जाए तो अब जो मौसम आ रहा है उसमें ये फल मिलना बहुत ही आसान हो गया है, जैसे में अमरूद। अमरूद एक ऐसा पेड़ है जिसे हम अपने घरों में लगा सकते हैं और एक औषधीय फल है जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। कहते हैं अमरूद पोषक तत्वों का खजाना है। हम इसलिए कह रहे हैं बहनों, श्रोताओं, कि अभी जैसा मौसम है और इस बरसात के दिनों में आप जैसे भी चाहें खाली जगहों में फलदार वृक्ष लगाएं, पपीता, अमरूद, केला, ये जो है इस मौसम में लगने के लिए अनुकूल है।

और अभी जो ज़मीन है वो भीगी हुई रहती है, जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अमरूद की। अमरूद जो है एक पोषक तत्वों का खजाना है, इसमें विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। इसके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, साथ ही वजन घटाने में भी ये मदद करता है। अमरूद खाने के जो लाभ हैं वो काफ़ी फायदेमंद है, जैसे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। अमरूद विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर को बीमारियों और संक्रमणों से लड़ने की ताकत देती है। पाचन तंत्र, इसे मौजूद उच्च फाइबर कब जैसे एसिडिटी समस्या को दूर करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। ब्लड प्रेशर यानी ब्लड शुगर नियंत्रण, अमरूद का ग्लाइकेमिक इंडेक्शन काफ़ी कम होता है, जिस कारण इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फल माना जाता है। हृदय को स्वस्थ रखता है, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह फल ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। वजन कम करने में मदद, कम कैलोरी और ज़्यादा फाइबर होने के कारण इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ होता है, जिससे कि आप अस्वस्थ स्नैक्स से बचते हैं। त्वचा और आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, इससे विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो त्वचा में निखार लाता है और आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। तो अमरूद का सेवन हमेशा दिन के समय करना चाहिए। रात या शाम को इसे खाने से सर्दी जुकाम व खांसी की समस्या होती है। अमरूद के आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से हम भरपूर ये फल होता है, जिसका हम सेवन करें तो काफ़ी फायदेमंद है। तो हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते ही प्यारा सा गाना।

0: और इसी गीत के साथ जो हर पल मुझसे में आगे दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोताओं, ये थी पेड़।

0: की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजातशत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो
1: भागो भाग जाओ भाई अरे भागो अरे अरे सिपाही आ गए अरे अरे भाग जाओ
0: भाग जाओ भाग जाओ
1: अरे छुप जाओ छुप जाओ
2: अरे यहां यहां नहीं आ
0: अरे मैंने कुछ नहीं किया
3: आप आया कब
4: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर बड़े चलो, बड़े चलो
4: सिकंदर।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो,
4: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दुष्टों को, भाग मेरे भाई,
1: पकड़ो इनको,
0: पकड़ो इन्हें।
2: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
3: महाराज चंद्रगुप्त आप?
2: हाँ
4: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।

0: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
1: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
2: धन्य हो आचार्य।
3: धन्य हो
4: आचार्य।
3: धन्य हो
4: आचार्य।
3: धन्य हो।
5: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग,
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र जहां सब सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। अब से कुछ

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना

में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्यप्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है।
0: जी क्या
1: और
0: बात है।
1: ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी
1: बिल्कुल,
0: झूलने
1: वो
0: का मौका
1: झूले
0: मिला?
1: भी याद आते हैं। पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है। और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 71, तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? हाँ, और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो
0: पारी,
1: रही है।
0: हाँ।
1: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं,
0: हाँ,
1: कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें। और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हो, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह

0: के साथ चले
1: बताएं,
0: जाते हैं
1: और बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे
1: जी
0: देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो
1: जी
0: क्या
1: जी
0: आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो।
1: नहीं, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी इसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है
0: जब
1: जैसलमेर।
0: बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खास तौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?

0: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उस साइड ज्यादा सूखा होता है।
1: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है
0: पर्यटन? उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
1: वाह।
0: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
1: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
0: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
1: जी हाँ।
0: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो कुदरत फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी जो है फेवरेट सिंगर है, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
1: और मुकेश के गाने
0: जी, मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे इस बात के साथ, बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा,
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है। क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है। बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं। मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है। मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे। क्या सीखा है आपने गाना? क्या
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेरे।

0: तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है, और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ, पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह आएगा ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001 सात 2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना, कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो, हेलो फरमाइश सुनने वाले हो, प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है उधर? बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना, तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है। कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है।
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ। ये उलोकुटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
0: जी जी जी,
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी।
0: जी बिल्कुल,
1: देखने के लिए
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
0: तो ये शक्तिपीठ है
1: बिल्कुल।
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी।
1: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो
1: जी जी,
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरो का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पैरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरू सुल्तानपुरी
0: जी, गीतकार,
1: संगीत तैयार किया है आदि बर्मन जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया।

0: हेलो फरमाइश।
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज टू से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। दो तीन दिन पहले तो बहुत गर्मी थी।
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं, अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में, मैं 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है।

0: पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
1: अरे वाह क्या बात।
0: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रही हैं कि अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
1: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है, क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: अरे वाह क्या बात।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो।
1: तो गा के सुनाई गनवा।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
0: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला ए आर रहमान जी, जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी,
0: क्या बात है भाई। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुंडलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी

0: बेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका घेरा रे बरेली
0: बरेली
1: के
0: के
1: बाजार में।
0: बाजार में।
1: हाँ
0: और बरेली की और कोई
1: जी,
0: खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और
1: जी
0: अपने कामकाज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी, अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम
1: हाँ
0: करते
1: जी
0: हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते क्या बनाते हैं
1: मैम जी, हम
0: क्या?
1: सूट भी बना लेते हैं, साड़ियां भी बना लेते हैं, आए शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियां भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की।
0: शादियों में?
1: हाँ मैम जी,
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, आपका कार्यक्रम रंग तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मीरा भजन इस एल्बम से। लता मंगेशकर की आवाज है, मीरा बाई का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई का ये भक्तिपद, आवाज लता मंगेशकर की थी।

0: चंदन दास की आवाज में अभी आपने निदा फाजली का ये कलाम सुना। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की

सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और आइए अब सुनते हैं मिलिंद गदवी का लिखा गीत। इसे आवाज दी है हमशिका अय्यर ने।

हमशी का ईयर की आवाज थी ये, और अभी आपने इनका गाया ये ओगार फिल्मी गीत सुना। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शोभा गोटू की आवाज में ये शास्त्रीय रचना।

0: शोभा गुल्टू की आवाज में अभी आपने ये शास्त्रीय रचना सुनी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली की आवाज। इनका गाया ये अगार फिल्मी गीत सुनिए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने

0: उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको जिगर मुरादाबादी का ये कलाम सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और हरजोत कौर की आवाजों में है। गीतकार हैं अनजान और ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में ये गैर फिल्मी गीत।

और आइए अब सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश। कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

0: इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिग्गज गीतकार और शायर असद भोपाली के लिखे कुछ गीत। आपको याद है ना, आज उनका जन्मदिन है। तो आइए यादों की महफिल कार्यक्रम में आज असद भोपाली जी को हम याद करते हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में असद भोपाली की लिखी ये रचना, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है एक सपेरा एक लुटेरा।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे।

0: पर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए असद भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है हम सब उस्ताद हैं।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था हम सब उस्ताद हैं।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर और कमल बारूद की आवाजें। फिल्म का नाम है पारस मणि। असद भोपाली के शब्दों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं, शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम श्रीमान फंटूश, रचना असद भोपाली की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म टावर हाउस का गीत सुनवा रहे हैं, रचना असित भोपाली की और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है आया।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म नाग मंदिर का गीत, आवाज मोहम्मद रफी।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक नारी दो रूप का ये गीत।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ गीत सुनवाए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। बस आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, निदा फाजली ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो चलिए निकलते हैं इस आज के सुरीले सफर पर, या यूं कहें कि इस संगीतमय सफर पर। और आज इस सफर में कुछ कालजयी और सदाबहार धुनों पर आधारित कई ऐसे गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपको लगभग एक जैसे गाए हुए लगेंगे, है ना। यानी एक ही मीटर में गाए हुए ये गीत हम कई बार सुनकर ठिठक भी जाते हैं या महसूस करने लगते हैं कि अरे, ये तो बिल्कुल एक जैसा ही गाया गया है। यहाँ शास्त्रीय रागों पर बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि कौन सा गीत पूर्ण रूप से किस राग पर आधारित है ये तो कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता ही बता सकता है। लेकिन हाँ, जब हम इन गीतों पर अध्ययन कर रहे थे तो हमने जाना कि आज के ये सभी गीत एक ही राग पर आधारित हैं और सुनने में बिल्कुल लगभग यूं कहें एक जैसे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सुरीले सफर पर। हाँ, हमारे बहुत से श्रोताओं ने कभी लिखा है कि आज के गीत राग यमन पर आधारित हैं, राग आसावरी पर, राग शिवरंजनी पर, राग अल्लैया बिलावर पर, राग पीलू पर। बहुत सारे रागों का हमारे श्रोताओं ने जिक्र किया है, लेकिन हमने आपको कहा कि यहाँ राग इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं है। हमारा उद्देश्य इस रूप में आपका मनोरंजन करना है कि ये गीत जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे, ये गीत उस गीत से कितना मेल खाता हुआ है। ये अलग बात है कि ये गीत किसी एक राग पर आधारित है, कोशिश तो हम करेंगे उसे जानने की। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे गाने जिसमें भाव या मूड एक जैसा है, ऐसे गीत लेकर आए हैं। ऐसे गीत जो सुनने में एक जैसे लगेंगे, हाँ, और शास्त्रीय दृष्टि से भी वैसे उनका राग एक ही है। ऐसे गीत जो एक ही मधुर धुन से प्रेरित हैं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस मधुर और सदाबहार राग पर कई बेहतरीन गीत बने हैं जो आपको बिल्कुल एक जैसा ही अनुभव करवाएंगे। इन सभी गानों को इस कार्यक्रम में एक मधुर माला की तरह पिरोया गया है। तो बताइए कौन से हैं वो गीत, और आज हमने एक बार फिर आपके लिए कुछ शब्द जोड़े हैं कि इन गानों में ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए उन गानों को ढूंढने की, है ना, उस राग को पहचानने की। अगर आप में से हमारे श्रोता जो शास्त्रीय रागों के ज्ञाता हैं, तो आज के शब्द हैं हवाएं, दिल, कहा था, तमन्ना, महका, जरूरत, नगमा, अगर, किनारे और मजबूर। और यकीनन हमारे श्रोता बहुत बहुत बहुत होशियार हैं, क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे ऐसे श्रोताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि भाई आज तो ये गाने ये हैं, सारे गाने सही लिख दिए हैं हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, और कई श्रोताओं ने इन्हें जानने की कोशिश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार अलग अलग फिल्मों के गीत सुनते हुए अचानक एहसास होता है कि इनके बोल, गायक, संगीतकार और समय भले ही अलग हों, पर इनकी मूल धुन या मीटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग फिल्मों, अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों की रचनाएं, लेकिन इन्हें एक अदृश्य संगीत सूत्र जोड़ता है। यही भारतीय फिल्म संगीत की खूबसूरती है। एक कालजयी धुन समय के साथ नए शब्द पहनती है, नए स्वर पाती है, नए भाव ग्रहण करती है, फिर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखती है।

0: है एक सुंदर धुन समय की सीमाओं को पार कर कई पीढ़ियों तक जीवित रहती है। आज के सभी गीत आपने उस राग का जिक्र भी कर दिया है, लेकिन आपने बहुत सुंदर इबारत
1: इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन।

रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस आज आर्यभट्ट सभागार में शुरू हुआ। 3 दिवसीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर झारखंड स्टेट एजुकेशन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नरेंद्र भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और राष्ट्रपति पुरस्कार से

0: सम्मानित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुलपति ने बताया कि कल सोहराय कला पर विमर्श और पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। समापन वाले दिन पौधारोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
1: कल विद्यार्थी जो शिक्षा के नीति के अनुरूप उनका कला और संस्कृति दीर्घा और फाइन आर्ट्स का प्रदर्शन होगा, और परसों जो हमारा अंतिम दिन होगा जो कि वास्तव में 12 तारीख स्थापना दिवस है, उस दिन हम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे।
0: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग छापेमारी में 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की। SDPO डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि पुलिस इस बड़े सिंडिकेट की जांच कर रही है।
2: पुलिस के पूछताछ क्रम में ये पाया गया है कि ये सभी लोग एक ड्रग पेडलिंग सिंडिकेट का हिस्सा, बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आते थे चक्रधरपुर में, छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करते थे। तो एक बड़े नेटवर्क को इसी तरह 2 बैक टू बैक छापामारी करते हुए ध्वस्त किया गया। इसमें और भी हमारे पास इनपुट्स हैं और लीड्स हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है।
0: सरायकेला खरसावां में आगामी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने नगर क्षेत्र का पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान रथ यात्रा समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 666 अंक चढ़कर 77,407 पर और निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,161 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 12 और 13 जुलाई को रांची, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में गोड्डा में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बोकारो में 18 से 27 अगस्त तक NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष लंबोदर महतो ने बताया कि इसमें देश के बेहतरीन तीरंदाज, ओलंपियन और राष्ट्रीय कोच शिरकत करेंगे।
3: निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे और सभी ग्रुप का मिलाकर लगभग 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

जी, तो आज फेसबुक पेज पर जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज का ये सफर थोड़ा सा कठिन हो गया है हमारे श्रोताओं के लिए, जबकि कठिन नहीं है। भाई बड़ा रुक रुक कर चल रहे हैं आप लोग तो। हमने तो आपसे वादा लिया था कि सुजिला सफर में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और दुख तकलीफें जो भी कुछ आएगा उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा थक गए हैं, है ना? थके नहीं, हमारे साथ चलते रहिए और अंततः हमें मंजिल मिलेगी जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को हमारा नमस्कार। आज आप कुछ अलग ही थीम लेकर आई हैं, राग रागिनी का तो हमें नहीं पता, हमारे जो गाने हमें याद आएंगे उन्हें हम लिख भेजेंगे। हाँ तो लिख भेजिए ना कि आपको ऐसे कौन से गीत याद आ रहे हैं जब आपने इन्हें जब जब सुना तो लगे आपको ऐसा लगा कि अरे ये गीत तो हमने पहले भी सुना था और ये गीत भी वैसा ही लग रहा है। तो इस तरह के भाव कई बार हमें लगता है। हम हालांकि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन एक श्रोता मात्र होते हुए भी हम ऐसा महसूस तो कर ही सकते हैं ना। तो उन दो गानों का जिक्र आपको करना है और जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं हमारे श्रोता वो तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस राग पर आधारित कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें राग कभी समझ ही नहीं आए और न ही कभी हमने समझने की कोशिश की, बस हमने गीतों से प्यार किया, फिर राग कोई भी हो, जो गीत हमें अच्छा लगा उसे गाया गुनगुनाया और आज तक गीतों के साथ हैं। कुछ गीतों से बहुत कुछ सीखा है और कुछ गीतों ने हमें सहारा भी दिया है। कुछ गीतों को सुनकर हमने बहुत अच्छे से काम भी किए और हाँ कुछ गीत उदास भी कर गए, पर फिर कुछ गीतों ने जीवन के सच्चे राज भी दिखाए जिनके साथ रहकर हमारा इतना सफर कट गया, बस आगे का सफर भी अच्छा बीते इन गीतों को गुनगुनाते हुए। कितनी बढ़िया बात लिखी है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और वही हम भी आपसे चाहते हैं कि एक श्रोता मात्र बनकर आप उन गीतों को याद कीजिए जो कभी आपको लगे होंगे कि ये गीत हमें एक जैसे लगे। बस इतना ही तो सोचना है कि दो गीत कौन से ऐसे दो गीत थे जो हमें एक जैसे महसूस हुए, है ना? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो शब्द है वो एसडी बर्मन साहब की धुनों से प्रेरित होकर लग रहा है, ठंडी हवाएं और फिल्म के गीतों से मिलते

चलते सभी गीतों की धुन भी हम आज सुनने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाएं शब्द पर हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन और सदाबहार गीत बने हैं जो प्यार, उदासी और मौसम के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ हवाएं या हवा से जुड़े कुछ सबसे लोकप्रिय गानों की सूची भी आपने दी है और आपने हमारे हर शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हर शब्द पर अपनी राय हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने गीत सिर्फ कानों में नहीं गूंजते, वे यादों में महकते हैं और जब उन्हें सुनने वाले दिल से जुड़े हों तो हर धुन अपनी सी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम किसी गाने से दिल से जुड़ जाते हैं तो हर गीत हमें अपना सा लगने लगता है। चलिए, ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो भी आपको अपना सा ही लगता है। याद आया?

के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती हैं ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सकें। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरूर सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं है बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्री, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं, जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा है आपने संगीत का असर। हमारी एक श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं? बिल्कुल रहे न रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हों कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में एक गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आए। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर साहब के बोलते। इस गीत के माधुर्य से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहाँ है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गावाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत ने होती बात और आगे बढ़ी। और 1985 आर डी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आर डी बर्मन के संगीत साम्राज्य के 9 रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशंस पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से 2 गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल हैं। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकरीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात की हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना।

लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाई लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंदा है। गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोंसले का था। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोंसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड राग पहाड़ी है चांदनी चौक। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एसडी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूँ, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूँ कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूँ। वही श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि यह गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था?

0: दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन

0: किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल एल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल एल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से एल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मुजफ्फरपुर शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश।

0: बिहार, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में। और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आभा। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहला गाना फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक और कैलाश खेर की। संगीत अनु मलिक का है और गीतकार हैं समीर।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत।

0: फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली।

फिल्म रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की और धुन SN त्रिपाठी की।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
4: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से एनुमरेशन फॉर्म शीघ्र भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही फॉर्म भर सकते हैं, गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने टीजीटी नियुक्ति परीक्षा 2016 में विलंब से नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने समान वरिष्ठता, अपग्रेड वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने अजय कुमार सहित 8 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की

0: स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे बदलावों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर अंसारी ने विशेष रूप से रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रिम्स 2 के शुरू होने से झारखंड के मरीजों को राज्य में ही आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान तेज करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। नई लिफ्टें सेल्फ रेस्क्यू प्रणाली सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिससे बिजली बाधित होने की स्थिति में भी यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। सिमडेगा जिले में ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार रथ यात्रा शुरू होने के बाद 9 दिनों तक विभिन्न बस्तियों के लोग बारी बारी से भगवान को महाप्रसाद का भोग अर्पित करते हैं।
1: खास बात है कि 9 दिनों तक लगातार रथ यात्रा के बाद महाप्रसाद भोग लगाया जाता है और वितरण कराया जाता है, जिसमें 100 से 150 केजी भोग लगाया जाता है। और यह व्यवस्था गांव के लोग करते हैं, सबका बस्ती बांटा हुआ है, किस दिन किस बस्ती को करना है। किसी दिन ब्राह्मण बस्ती को है, तो राउत बस्ती को है, तो नीचे बस्ती को है।
0: दुमका जिले में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने 190 चिन्हित गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 133 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 1025 घरों में मीटर लगाकर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरायकेला खरसावा के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण के लिए किया जाएगा।
2: अभी सीआईएससी सिस्टम में है और दिल्ली का जो सीआईएससी 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे खेल में। खेलो इंडिया एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसी हिसाब से इस साल हर एक बच्चे से 100 रुपया करके लोग कलेक्ट किए हैं।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगे कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारते मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फ़ोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारी लॉन्ड्री है, बंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गाँव में हमारा मकान है
0: जी। जी जी,
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी सवा महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी कि बारिश आपको कैसी लगती है, बारिश में आप क्या क्या और चीजें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है
0: जी। किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। बच्चा आ गया छोटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा
0: जी। और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी,
0: क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ, उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा,
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की,
0: जी,
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा,
1: हम लोग इसमें करते हैं जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं
0: जी,
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं।
0: जी, तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं।
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है तो उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी,
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको गिफ्ट मिलता है, और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी, और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं,
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले।
0: जी जी जी,
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं।
0: जी, तो फिर
1: नहीं आता है।
0: हाँ जी,
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी
0: जी,
1: उसका माँ बाप नहीं थे तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: अब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है आँखियों के झुंझरों पे से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का
0: जी,
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं।
0: क्या
1: अभी
0: बात है। आपको
1: जी
0: बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी घूमने कहीं चले जाए और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए हैं?
1: जी जी
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें यादें तो साझा कीजिए।
1: जी जी मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ
0: जी,
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी,
1: पानी में, बारिश में वहाँ पर
0: जी
1: जी, तो अच्छा लगता था। पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अमदावाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता
1: हाँ,
0: जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या

0: आप खेल सकती थी?
1: बारिश में बिजला और पानी में छपछपना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती है, ये इस बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है। मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ
0: जी,
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई मैं
0: जी। तो
1: हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं दिल अपना और पीत पाई का गाना है, दिल अपना
0: जी। बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी,
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे

0: बहुत अच्छी लगती है बारिश में, घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
1: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
0: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे, मेरा गांव सुल्तानपुर है
1: जी।
0: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे,
1: अच्छा
0: खो खो खेलते थे।
1: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
0: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
1: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बनी जाता है ना गृहिणी
0: बन ही
1: की।
0: जाता है।
1: जी,
0: हाँ।
1: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया,
0: हाँ,
1: है ना।
0: कुछ भी बना। हाँ,
1: और मान लीजिए सूजी कम है तब?
0: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
1: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
0: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठानी,
1: जी
0: बहू,
1: जी
0: पोते, पोती,
1: क्या बात है, भरा
0: बच्चे।
1: पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
0: हाँ।
1: अच्छा लगता है आपको, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
1: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली,
0: जी स्वागत है।
1: नमस्ते।

0: ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान
1: जी
0: है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है,
0: जी
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से, हरी
0: हाँ
1: भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम।
0: जी। और
1: और
0: बार
1: उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद हैं आपको?
1: बारिश में देखिए, पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी।
0: हाँ
1: और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे,
0: सही बात है। और वो
1: अब
0: अगर
1: घर में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकोड़े वगैरह बनाए, बढ़िया बढ़िया, है ना? तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ तो बस रास्ता
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार,
0: जी जी
1: उसमें
0: जी
1: जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: रामचंद्र चरित मानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं ना, बताते हैं
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: स्टोरी,
0: जी
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है,
1: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता
0: सही बात है। उसकी
1: है ना,
0: विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना? तो
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ और
0: यार
1: बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के, तो
0: जी,
1: मैं
0: और
1: सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: एक्चुअली
0: प्रतिमा जी आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: ये पसंद मेरी मम्मी की है, स्वप्न
0: जी
1: झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो
0: जी
1: है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक। तो प्रतिमा जी आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे,
0: जी
1: अभी जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने
1: हाँ
0: की
1: जी,
0: कोशिश करी
1: हाँ
0: और
1: जी।
0: कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है, चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है इस
0: क्या बात है,
1: टाइम।
0: यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
1: बहुत हो रही है हम
0: तो
1: जी।
0: बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप
1: हाँ
0: साझा
1: जी,
0: कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है, तो
0: जी
1: मैं वहाँ पे, हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़ियाँ एक पास में जगह थी,
0: जी
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल पूरा,
0: जी
1: और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
1: हाँ जी, हाँ बहुत बातें होती रहती।
0: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
1: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
0: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
1: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शो बरकरार है मेरी, मतलब बचपन की फ्रेंड, अभी तक हम लोग सब ग्रुप है, तो
0: जी
1: हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं, या
0: क्या
1: कभी
0: बात
1: कभी
0: है,
1: कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है
0: बहुत अच्छा
1: ऐसा।
0: लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है, तो
0: जी
1: ये म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ,
0: जी
1: मतलब पूरी फैमिली को ही हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था पहला
0: जी
1: स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने, मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है, तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं, तो
0: जी जी जी
1: बहुत खेला है। मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
0: जी
1: स्कूल पूरा, कॉलेज पूरा वो खेला।
0: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल, खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
1: और
0: में।
1: भी अच्छा लगता जी।
0: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी
0: तो अंजू जी, आज आपको
1: आप।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से। मैडम
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या
1: बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं बहुत
0: बात है।
1: ज्यादा।
0: तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं? क्या
1: सब सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है, जैसे
0: बात है,
1: दीपमाला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली।
0: जी। तो ये
1: हाँ,
0: बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा
0: जी,
1: देखना, ये सब की रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला
0: कर,
1: के
0: कला
1: फैन
0: के फैन हैं, क्या बात है
1: है।
0: जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ
0: उसकी कोई सीमा
1: वही।
0: नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना
1: हाँ, ये
0: जी।
1: बात है।
0: तो ये बताइए,
1: हाँ,
0: बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से, बिना
0: अच्छा
1: सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना नहाना सब बहुत पसंद,
0: क्या बात है।
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है तो
0: जी जी जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, बस
0: जी,
1: यही सब मेरा शौक है। सब
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या पसंद है,
1: चीज,
0: क्या
1: सब।
0: बनाए?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं, और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का,
0: जी
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलीप मंदिर का ये प्यारा
1: आप ही के
0: संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हम खो बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है, और सखी सहेली
0: जी,
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है।
1: जी
0: अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है, और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें,
0: जी
1: घर पे रहें। हाँ,
0: जी और बारिश में क्या क्या चीज़ें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आते ही सबको पकोड़े याद आ जाते हैं ना।
1: हाँ
0: मान लीजिए रसिका जी, मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीज़ें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज़ हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज़ बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े,
0: जी
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी
0: अच्छा,
1: इस
0: तो
1: तरह, और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास,
0: जी
1: नंदे
0: जी
1: और मेरे पति, एक बेटा।
0: भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुन करके।
1: हाँ,
0: और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई।
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो
1: हाँ,
0: बहुत,
1: ये गीत
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दे, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867 0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की भी अपील की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झेरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गुरतुर गांव में ओझागुड़ी के शक में 65 वर्षीय केशव राम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के बाद मौके से आरोपी महिला सुनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नहीं।
1: इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। आओ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी, आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरु जी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ, वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार

जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं, बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सपोर्ट बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ताना मारते, लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों

की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहाँ कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहाँ की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

रमेश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। अपने दिल में मुलाकात की ख्वाहिशों को दबाकर अक्सर उन्हें देखा है, किया है हमने भी उनके आने का इंतजार। ये इंतजार और उस इंतजार में कटती घड़ियां और लंबी होती जाती हैं। दिल सच ही तो कहता है, तुमको पा लेने में वो कैफियत कहाँ, जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए।

बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशीं होती गई। वो बात, वो तबस्सुम, वो चांदनी रंग उनके लबों का, ऐसा लगता है कि फूल खिल के भी उनका शबाब हो न सका। रंग रात का चढ़ता रहा और उनकी सूरत दिलनशीं होती गई। बड़ा मुश्किल ये अफसाना हो गया, किसी ने देखा एक नजर और दिल उनका हो गया।

के पैरों में लिपटी पाजेब को देखकर रश्क होता है। ये खनक बेबस ही दिल को धड़का जाती है। माथे की बिंदिया, ये नूर जो बातों से भी छलक जाता है। क्या कहूँ, कितना बेबस दिल को किया जाता है। उठकर तेरी बज्म से जाएं तो अब कहाँ, दिल ने तड़प कर तड़पाया सरे महफिल मुझे।

शम्मा को दिन के उजाले से क्या वास्ता, रातों के अंधेरे में जो जला करती है। मोहब्बत की रवायतों को सीने में छुपाए खामोशी से प्यार का इजहार किया करती है। कभी सोचते हैं क्यों परवाने शमा से जुदा हो न सके, चांद सितारों की रोशनी में फना हो न सके।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

विविद भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या कहूँ, जख्म दिल के हैं मेहरबानी आपकी, दर्द दिल भी है एक निशानी आपकी, वफा दिल से ज्यादा आपसे की है, चमन के फूलों की हाँ हमने भी आरजू की है, हसरतों की बंदिशें अब जाने भी दो, दिल की सदा मोहब्बत की दीवारों से टकराने भी दो।

0: तुमने बुलाया नहीं, कभी हम पास आए नहीं। रात मोहब्बत की धड़कनों को सुनती है, बारहा दिल में शबनम की तरह बरसती है। क्या कीजिए शिकवा दूरी का, मिलना भी गजब हो जाता है। जब सामने वो आ जाते हैं, एहसास से अदब हो जाता है।
1: रातों को चोरी चोरी

शम्मा दिल की जलाकर चिरागों को बुझा दीजिए, ये अफसाना मोहब्बत का अब फूलों को सुना दीजिए। कह दीजिए कि रात ढलने को है, सितारे शब के दामन में मुस्कुराने को हैं। ये नजारे फिर मुस्कुराएंगे, कैद भंवरे जो फूलों में हो जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा छाया गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। आरंभ होती है श्रोताओं हमारी आज की सायंकालीन सभा। आइए सायंकालीन सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम विवरण के साथ और जानते हैं अभी से लेकर रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रम को।

श्रोताओं फिर से थोड़ी देर बाद शाम 5:35 पर हम लेकर हाजिर होंगे घर आंगन महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम चर्चा में आप सुनेंगे परिवार नियोजन की आवश्यकता और छोटे परिवार का लाभ। विश्व जनसंख्या दिवस पर बातें होगी जन संरक्षण के नुस्खे, इस पे हम बातें करेंगे। वार्ता में देश के विकास में बाधक बढ़ती जनसंख्या, वार्ताकार हैं प्रीति कुमारी आप सुनेंगे। साथ ही वार्ता प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, वार्ताकार नूतन सिन्हा। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। खेती बाड़ी का समय होगा ग्रामीण कृषकों को संबोधित कार्यक्रम 6:02 पर। चर्चा में समन्वित मछली पालन, साथ ही नवजात बछड़ों की देखभाल। भेंटवार्ता में शुष्क भूमि विकास तकनीक, भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अखिलेश शाह, कृषि विशेषज्ञ क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू, वेट करता है संतोष कुमार। 6:30 पर आप सुनेंगे कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। चर्चा में स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभ, आज का विचार बकरी पालन से फायदे। भेंटवार्ता में कृषि वाणिक भेंटवार्ताकार हैं अनिल कुमार सिंह, कृषि विशेषज्ञ भेंटकर्ता संतोष कुमार। आज का मौसम, आज के बाजार भाव, इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे।

शाम 7 बजे, शाम 6 बजे आप आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा सुनेंगे। 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आज कल एक रंग फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे। शाम 7:15 पर अपने स्टूडियो से उड़ान रोजगार से जुड़ी बातों का कार्यक्रम होगा। 7:45 पर रात्रि 8 बजे चित्तपर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम, महफिल कवाली नगमों का कार्यक्रम रात्रि 8:30।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 103 MHz से आकाशवाणी डाल्टनगंज से। हम बोल रहे हैं, शाम के 5:36 हो चुके हैं, लेकर हाजिर हैं महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम।

जोहार नमस्कार सभी श्रोता बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम सुनते ही घर गुलजार हो जाता है, मन की बगिया मुस्कुराने लगती है, क्योंकि घर आंगन हो, चहक दहक ना हो और घर हमारा गुलजार ना हो ऐसा हो सकता है। कभी बच्चों की हंसी ठिठोली, कभी खुद से बातें करना, कभी परिवार के लिए कुछ करना, ये सारी बातें घर परिवार में ही होती है। तो आप सभी श्रोता बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोता बहनों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि 11 जुलाई पर आज 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, जनसंख्या केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य, संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। बढ़ती आबादी के साथ अवसर भी बढ़ते हैं, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक परिवार नागरिक बने और संतुलित विकास की दिशा में सोचें। बिल्कुल, अगर हम सोचें श्रोता बहनों कि क्या बढ़ती जनसंख्या हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा रही है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए समाज और सरकार की क्या भूमिका है। परिवार नियोजन और जागरूकता क्यों जरूरी है। बढ़ती आबादी के साथ पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। युवाओं को कौशल, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर देना भी

0: उतना ही आवश्यक है। श्रोता बहनों, आपके अनुसार बढ़ती जनसंख्या की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। जब जनसंख्या के साथ जागरूकता, शिक्षा और जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तभी एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण होता है। तो आइए हम सब मिलकर विश्व जनसंख्या दिवस पर हम सभी एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें। बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण और सकारात्मक सोच से जुड़े हर बातों का हम ख्याल रखें, ये हम सब के लिए बेहतर होगा। और अब ये सुनते हैं वार्ता।
1: शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम। नमस्कार, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों विभागों की विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में समान अवसर मिल सके और वे देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के अवसर से वृद्धि, मौजूदा और नई योजनाएं, स्वरोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य और केंद्र सरकार के नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए सामान्य हिस्सेदारी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत स्थापित सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चला रखा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर MMSE और सहकारी संस्थाओं को भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक एकता के आवश्यक प्रेरक तत्व के रूप में बताया है। उन्होंने सब्जी विक्रेताओं, दूध वालों, किराना दुकानदारों, अखबार विक्रेताओं, बुनकर कारीगरों, फूल विक्रेताओं जैसे विभिन्न पेशों को भारत की रीढ़ बताया है। साथ ही उन्होंने सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया है। प्रधानमंत्री के अनुसार सहकारी संस्थाएं केवल एक प्रणाली नहीं है, बल्कि एक सामूहिक भावना का प्रतीक है। भारत जैसे देश में यह भावना सामान्य रूप से जुड़ी गतिविधियों को बड़े लाभदायक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, सदस्य चालित और टिकाऊ उद्योग प्रणाली में बदलने की अपार क्षमता रखती है। भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ कहे जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यम मंत्रालय ने इस क्षेत्र के समर्थन हेतु योजनाएं और पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना उन कुशल हाथों को समर्पित है जिन्हें समय पर और पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता है, यानी भारत के विश्वकर्मा जो भारत की नींव है। इस योजना के तहत जिन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्राथमिकता दी गई है, उनमें बढ़ई, लोहार, सोनार, राजमिस्त्री, नाई, दर्जी, मूर्तिकार और कई अन्य शामिल हैं। ये न केवल एक पेशा दर्शाते हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई गौरवशाली कारीगरों की विरासत को भी दर्शाते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार इन विश्वकर्माओं की विरासत को सम्मान देते हुए उन्हें सशक्त बनाना चाहती है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य भारत भर में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करना है। इस योजना में कौशल उन्नयन, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिनसे इन कारीगरों की आजीविका को बेहतर बनाया जा सके। इस शिल्पकार और कलाकार जो अपने हाथों और अपने औजार से काम करते हैं, भारतीय श्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आम तौर पर स्वरोजगार में लगे होते हैं। तो और अब बातें करेंगे।

0: ये महिलाओं से संबंधित योजनाएं पर सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कई सरकारी योजनाओं की भी शुरू की है। उदाहरण के लिए भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। यह योजना महिलाओं के स्वामित्व वाली विनिर्माण कंपनियों के लिए 10.15% की ब्याज दर पर 20 करोड़ तक ऋण प्रदान करती है। महिलाओं के लिए एक और सरकार समर्पित मैत्रिक पहल अन्नपूर्णा योजना है, जिससे खान पान व्यवसाय स्थापित करने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप में सहायता करना है। भारत को एक वैश्विक निर्माण और सेवा केंद्र में बदलने के लिए सहकारी उद्यम जैसे समुदाय आधारित व्यापार संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पीछे न छूटे। भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कई सरकारी कार्यक्रम और वित्तीय लाभों का उपयोग करके महिलाएं वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें। सभी कार्यक्रम और प्रयास महिला उद्यमियों को समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं। महिला को उनके जीवन, परिवार और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। आप सब विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए संबंधित विभाग में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: और अब ये सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।
2: कुछ हमको
3: क्या
2: कुछ तुमको
3: हाँ?

0: इस गाने के बाद श्रोता बिनु आइए सुनते हैं वार्ता। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम वार्ताकार है नूतन सिन्हा।
1: नमस्कार। राष्ट्र को आज जिन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति एक है जो बहुत ही चिंतनीय गति से बढ़ रही है। हमने किसी क्षेत्र में प्रगति की हो या न की हो परंतु जनसंख्या वृद्धि के मामले में हम विश्व के अनेक देशों से काफ़ी आगे हैं। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1947 में भारत की आबादी 34.20 करोड़ थी जो अब अनुमानतः 1.25 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। भारत में विश्व का 2.4% भूभाग है जिसमें विश्व की लगभग 15% आबादी निवास करती है। देश की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति गहन चिंता का विषय है और इसके समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। देश के आर्थिक मोर्चे पर प्राप्त उपलब्धियां आबादी के लगातार बढ़ते रहने से धूमिल हो रही है। यदि हमें देश को जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट से बचाना है तो हमें ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो देश के आम लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बना सके। साथ ही साक्षरता के लिए भी प्रयास करना होगा जिससे शिक्षा का प्रकाश सब तक पहुँच सके। परिवार कल्याण कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं तथा साधु संतों तथा धर्म गुरुओं की भी मदद लेनी होगी क्योंकि जनता उनकी बात का अनुसरण करती है। आज देश में सबसे ज़्यादा चर्चा बेरोजगारी को लेकर है और इसकी सबसे बड़ी वजह जनसंख्या को ही बताया जा रहा है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की पूंजीगत साधनों में कमी हुई है जिससे रोजगार सृजन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या वृद्धि से हमारे आर्थिक नुकसान का बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ कुपोषण की भी समस्या लगातार बढ़ रही है। हम हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मानव के विकास के लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बड़ा बाधक है। जनसंख्या वृद्धि हमारी सरकार

सरकारों के लिए भी काफ़ी संशय वाली स्थिति पैदा करती है। सरकार को बिजली, परिवहन, चिकित्सा, जलापूर्ति, भवन निर्माण इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे कि अन्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इस बढ़ती जनसंख्या का असर हमारे आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। देश के आर्थिक मोर्चे पर प्राप्त उपलब्धियां आबादी के लगातार बढ़ते रहने से धूमिल हो रही है। यदि हमें देश को जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट से बचाना है तो हमें ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो देश के आम लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बना सके। साथ ही साक्षरता के लिए भी प्रयास करना होगा, जिससे शिक्षा का प्रकाश सब तक पहुंच सके। परिवार कल्याण कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं तथा साधु संतों तथा धर्म गुरुओं की भी मदद लेनी होगी, क्योंकि जनता उनकी बात का अनुसरण करती है। आज देश में सबसे ज़्यादा चर्चा बेरोजगारी को लेकर है और इसकी सबसे बड़ी वजह जनसंख्या को ही बताया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की पूंजीगत साधनों में कमी हुई है, जिससे रोजगार सृजन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या वृद्धि से हमारे आर्थिक नुकसान का बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ कुपोषण की भी समस्या लगातार बढ़ रही है। हम हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानव के विकास के लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बड़ा बाधक है। जनसंख्या वृद्धि हमारी सरकारों के लिए भी काफ़ी संशय वाली स्थिति पैदा करती है। सरकार को बिजली, परिवहन, चिकित्सा, जलापूर्ति, भवन निर्माण इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे कि अन्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इस बढ़ती जनसंख्या का असर हमारे देश में भी दिखने लगा है। हमारी सुविधाएं सिकुड़ने लगी हैं। दैनिक जीवन लगातार मुश्किलों में घिरता जा रहा है। सड़क हो, मेट्रो स्टेशन हो, या फिर बस स्टैंड हो, या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह हम इस जनसंख्या के नुकसान को देख सकते हैं। लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चीन भारत से अधिक बड़ा होने के बावजूद विश्व में उस देश की जनसंख्या 18.1% के आसपास है। इतना ही नहीं, जनसंख्या विस्फोट की वजह से भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता और अराजकता तथा अपराध में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास थी, जो आज 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस जनसंख्या वृद्धि के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि परिवार नियोजन के कमज़ोर तरीके, शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, अंधविश्वास तथा विकासोन्मुखी सोच की कमी है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में अन्य प्रमुख कारण है कम उम्र में विवाह होना। कानून बनने के बाद बाल विवाहों में तो कुछ कमी अवश्य आई है, परंतु अभी तक पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। भारत में लड़के की चाहत भी जनसंख्या वृद्धि के लिए काफ़ी कुछ जिम्मेदार हैं। सरकार द्वारा चलाया जा रहा परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण कार्यक्रम अभी भी जनता का कार्यक्रम नहीं बन पाया है। इसे जनता द्वारा मात्र सरकारी कार्यक्रम ही समझा जाता है। अपने देश में जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए 1942 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर में तो कमी लाने में कुछ सफलता मिली, परंतु जन्म दर कम कर पाने में असफलता ही हाथ लगी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। बाल विवाह पर रोक लगाना भी जरूरी हो गया है। लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष और लड़कों की 21 से 25 वर्ष करना जरूरी है। यदि जनसंख्या वृद्धि की गति को काबू में न किया गया तो बढ़ती जनसंख्या का स्वरूप सामान्य जनजीवन को तबाह कर देगा। इसलिए समय पर सचेत हो जाना ही विश्व जनसंख्या दिवस की सार्थकता है। हालांकि हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास में जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है
और सभी संसाधनों में सर्वाधिक

0: शक्तिशाली एवं सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत होती है वह मानव संसाधन की ही होती है, लेकिन अतिशय जनसंख्या वृद्धि कहीं न कहीं एक राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमें उन उपायों पर सोचना होगा जिससे कि इस जनसंख्या विस्फोट से बचा जा सके। परिवार नियोजन, जागरूकता, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना और शिक्षा पर जोर देने के अलावा लोगों को राष्ट्र और समाज के प्रति उसके कार्यों का आभास दिलाना भी होगा।
1: इसी वार्ता के साथ कार्यक्रम घर आंगन से हमें दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर खुशी पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार शाम के 6 बजे।
0: नमस्कार। राष्ट्र को आज जिन गंभीर

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। विश्व प्रसिद्ध सरायकेला रथ महोत्सव की तैयारियों के तहत झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने श्री जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। डीजीपी ने अधिकारियों, मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय अनुकंपा एवं स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, उग्रवादी हिंसा से जुड़े मामलों, एमएसीपीएस सेवा संपुष्टि तथा विभिन्न विभागों के प्रोन्नति प्रस्तावों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाली इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के जनबानी गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक अवैध महुआ शराब भट्टी ध्वस्त कर दी। कार्रवाई के दौरान 800 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। और खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा गांव स्थित तजना नदी किनारे आज एक युवती और एक युवक का शव मिला है। मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले की नेहा कुमारी और अरुण कुमार राणा के रूप में की गई है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की सहायता से मामले की जांच की जा रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं कि FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

ग्रामीणों और कृषकों को संबोधित आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस खेतीबाड़ी

कार्यक्रम के तहत आप चर्चा में जानेंगे समेकित मछली पालन और साथ ही साथ सुनेंगे नवजात बछड़ों की देखभाल। और इसी कार्यक्रम के कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश शाह से ली गई भेंटवार्ता। विषय है शुष्क भूमि विकास तकनीक और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं समेकित मछली पालन। जी हाँ श्रोताओं, समेकित मछली पालन काफ़ी आधुनिक और एक लाभकारी कृषि पद्धति है, प्रणाली है, और इसमें मछली पालन के साथ साथ कृषि का कार्य, पशुपालन हो, बत्तख पालन हो, मुर्गी पालन हो, सुअर पालन हो और बागवानी जैसे कई गतिविधियों को इस समेकित मछली पालन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि भूमि, पानी और जितने भी संसाधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और संतुलित तरीके से कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लाभ को प्राप्त करना होता है। और इस गतिविधि में जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका किसी दूसरे गतिविधि में उपयोग, जिससे कि उत्पादन लागत कम और पर्यावरण भी सुरक्षित। तो श्रोताओं, समेकित मछली पालन का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, निरंतर सीमित होते कृषि योग्य भूमि, तो इसमें समेकित मछली पालन काफ़ी प्रभावकारी एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें भोजन, पोषण और रोजगार के साथ साथ आय में भी बढ़ोतरी होती है। इसमें हमारे जो भी छोटे किसान भाई हैं, सीमांत किसान भाई हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक विशेष लाभकारी है। समेकित मछली पालन के अंतर्गत श्रोताओं, हम मछली के साथ बत्तख का पालन कर सकते हैं, मछली के साथ मुर्गी पालन, सुअर पालन और मछली पालन के साथ डेयरी पालन में गाय या भैंस का भी हम पालन कर सकते हैं, साथ ही साथ बकरी पालन भी हम कर सकते हैं और मछली पालन धान की खेती में भी इसका हम उपयोग में लेकर लाभ ले सकते हैं। और बागवानी और सब्जी उत्पादन में भी कहीं ना कहीं मछली पालन का एक विशेष भूमिका हो जाती है। इसमें तालाब के आसपास से पशुपालन या कृषि की जो भी गतिविधियां हैं वह की जाती है। इसमें पशु या पंछी के जो भी गोबर हो गए या जो भी जैविक अवशिष्ट पदार्थ हो गए वो नियंत्रित मात्रा में तालाब में डाला जाता है और ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक भोजन पलवक का विकास होता है। इससे मछलियों को पर्याप्त आहार मिलता है, कृत्रिम दाने पर खर्च कम हो जाता है और तालाब का पानी भी सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाता है। तो खेत के से जो भी अवशिष्ट या अवशेष प्राप्त होते हैं पशु एवं मछली के लिए, वो दोनों के दोनों उपयोग में श्रोताओं आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं श्रोताओं तालाब की तैयारी के बारे में। तो जब भी मछली पालन करनी हो तो तालाब की अच्छी तरह से तैयारी का होना भी जरूरी है। इसमें तालाब की देख रेख कर ले, पहले साफ सफाई करें, उसकी मरम्मत कर ले अगर कहीं से अगर अनावश्यक टूटा हुआ है तो, और जो भी उस तालाब में अनावश्यक जलीय खरपतवार हो या हानिकारक मछली हो उन्हें उससे हटा दें और तालाब के लंबाई चौड़ाई और उसकी आवश्यकता अनुसार देखते हुए उसमें चूना डालें। इसके पश्चात गोबर और जैविक खाद का प्रयोग करें। अच्छे तरीके से जल भरने के पश्चात ही गुणवत्तापूर्ण जो मछली के जो बीज होते हैं उसे उस तालाब में छोड़े। श्रोताओं, ये तो थी बातें तालाब की तैयारी की, किस तरीके से हम अपने तालाब की तैयारी कर हम मछली का बीज अपने तालाब में डालते हैं। अब बात करते हैं तालाब श्रोताओं की, इस तालाब में किस प्रकार की मछली को हम डालें जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो। तो श्रोताओं, इसमें मिश्रित प्रजाति के मछली के बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कॉर्प, ग्रास कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, क्रॉप, इस प्रकार के मछलियों का आपके तालाब में रहना आवश्यक है, क्योंकि इन मछलियों में भोजन ग्रहण करने की आदत अलग अलग स्टेज पर या अलग अलग तरीके से होती है। तो तालाब के सभी स्तरों पर प्रभावी तरीका से उपयोग हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मिश्रित प्रजाति का मछली का होना जरूरी हो जाता है। श्रोताओं, समेकित मछली पालन के कई तरीके से और कई प्रकार से हमें लाभ मिलते हैं। सर्वप्रथम, जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है उसका बेहतर तरीका से उपयोग हो जाता है। एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति हो जाती है,
उत्पादन

0: लागत भी कम हो जाता है और प्राकृतिक भोजन उपलब्ध होने के कारण कहीं ना कहीं चारे का जो खर्च है वह घट जाता है। जैविक खाद का बेहतर तरीका से उपयोग हो जाता है। मिट्टी एवं जल की उर्वरा शक्ति भी स्वतः बनी रहती है, क्योंकि देखा जाता है स्वतः कि इसमें हम जिस चीज का भी उपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो जैविक है, प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों का ही हम उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस कार्य से कृषि कार्य और पशुपालन कार्य और मछली पालन करने के कारण रोजगार की भी संभावना ज़्यादा बनी रहती है, परिवार को भी पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो जाता है और इसमें चूँकि जैविक चीज़ों का उपयोग हो रहा है स्वतः इस कारण से पर्यावरण भी कम होता है, इससे पशुपालन और कृषि दोनों का विकास होता है। स्वतः इस कार्य में जोखिम कम होता है और एक ही आय पर निर्भर न रह कर कई आयों का यहाँ पर विकास होता है। अगर एक आय प्रभावित भी होती है तो दूसरे आय से अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो खर्च है वो हो जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। सर्वप्रथम तालाब में हमेशा स्वच्छ और पर्याप्त पानी का रहना जरूरी है। ज्यादा मात्रा में गोबर या अपशिष्ट का भी उपयोग नहीं करना चाहिए तालाब में और समय समय पर जल की गुणवत्ता की जाँच भी करना जरूरी है। जब भी आपको तालाब में रोगग्रस्त मछली दिखाई पड़े या पशु दिखाई पड़े तो तुरंत वहाँ से उन्हें अलग कर दें। संतुलित मात्रा में भी पूरक आहार देना जरूरी है और नियमित रूप से स्वतः तालाब की निगरानी करें। मत्स्य बीज केवल प्रमाणिक स्रोत से ही खरीदें। जी हाँ, स्वतः उच्च क्वालिटी के मत्स्य बीज का ही हमेशा उपयोग करें। आर्थिक स्थिति से देखा जाए स्वतः तो समेकित मछली पालन से आय में तो बढ़ोतरी होती ही है और एक ही जमीन से या एक ही भूमि से मछली की भी प्राप्ति हो जाती है, दूध भी प्राप्त हो रहा है, अंडा मांस सब्जी और फल का भी उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये खेती से भी ज़्यादा लाभकारी बनता है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार के भी एक नए अवसर को पैदा करता है। श्रोताओं, इस पर हमारा कृषि और ग्रामीण विकास को आत्मनिर्भर बनाने में भी कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलता है। तो देखा जा सकता हूँ तो समेकित मछली पालन काफ़ी वैज्ञानिक टिकाऊ और लाभकारी कृषि का ये प्रणाली है, सिस्टम है। इसमें मछली पालन के साथ साथ कृषि कार्य और पशुपालन के कार्यों को एक साथ जोड़कर किया जाता है तो इससे कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। यह जो प्रणाली है सोता हूँ यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, इस कारण से काफ़ी संरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी होती है। साथ ही साथ ये हमारे जो भी किसान भाई इस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति को वह मजबूत भी बनाती है। इसलिए श्रोताओं, समेकित मछली पालन का उपयोग करें और इसका लाभ भी लें। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें कि किस तरीके से हम समेकित मछली पालन का इसका लाभ ले सकते हैं और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश शाह से ली गई भेंटवार्ता। विषय है शुष्क भूमि विकास तकनीक और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, हम बंजर भूमि विकास के लिए बहुत सारी तकनीकियां अपनाते हैं जिससे भूमि का विकास हो और हम खेतीबाड़ी बृहद रूप से कर पाएं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी भूमि है जो बंजर है, शुष्क है, जिसके विकास के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे हमारी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। शुष्क भूमि विकास हम किस प्रकार से करें, बंजर भूमि की देखभाल हम किस प्रकार से करें, कैसे हम उसको उपयोगी बनाएं, इन बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश शाह, जिनसे आज विस्तृत बातें होंगी शुष्क भूमि विकास पर। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को ये बताया जाए कि शुष्क भूमि जो है
2: जी,
1: इसे उपयोगी बनाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें।
2: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रदेश जो है झारखंड, उसमें भी जो हमारे पलामू प्रमंडल के तीन जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, जलवायु परिवर्तन के मामले में बहुत इनका जो है अहम रोल है।

0: ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारा रकबा है पूरे देश के साथ साथ जो हमारे झारखंड प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है वो आपको 10 साल 15 साल से उसमें कोई विशेष रूप से वृद्धि नहीं देखा गया है। कहने का मतलब कि जो आपका रकबा है एक निश्चित है, तो ज़रूरत आज इस बात की है कि जो हमारा शुष्क भूमि यानी कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, किस तरह अपने प्रदेश के किसानों को कृषि में किस प्रकार वो मददगार साबित हो सकता है, कितना बड़ा योगदान कर सकता है। जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं कि हमारा प्रदेश में खरीफ के मौसम में केवल 10-12% रकबा जो है वही सिंचित है, और रबी में तो और बुरा हाल है, 1-2% जो रकबा होता है वही जो है हमारा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारा यहाँ जो है शुष्क भूमि का बहुत बड़ा रोल इसमें कृषि किसानों के लिए जो है भविष्य में इसका ज़रूरत है,
1: इसको प्रभावित कर दे रहा है,
0: इसको प्रभावित कर रहा है। एक चीज़ और किसान भाई बताना चाहते हैं कि जो कृषि भूमि का योगदान जो है, जो कुल जो आपका फूड प्रोडक्शन होता है यानी कि खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है उसमें इसका लगभग जो है 40% योगदान है। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा जो है शुष्क भूमि कृषि का जो है योगदान है। उसी प्रकार हम जो पलामू प्रमंडल के साथ साथ अपने झारखंड प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि 10-12% रकबा ही हमारा सिंचित है खरीफ के मौसम में, और रबी में जो हमारा केवल 1-2%। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो परंपरागत तरीका से आप कृषि कर रहे हैं उसको थोड़ा बदल करके वैज्ञानिक तरीका अपनाना है। रही बात कि इसमें किस प्रकार हम अपने कृषि तकनीक को अपना करके उसमें उपज ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो है आमदनी बढ़ेगी, और खेतों की सबसे ज़रूरत है कि उर्वरा शक्ति जो होती है उसको आपको बहुत ध्यान रखना है। और अभी किसान भाई आप देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन की बात सारी दुनिया में हो रही है, तो इसमें किस प्रकार हमको संयोजन करके तकनीक का जो हम खेती कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करके किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारा पलामू प्रमंडल है, यहाँ पर पहले जो है 1180 मिलीमीटर बारिश हुआ करती थी पूरे वर्ष भर में, लेकिन आप इधर देखेंगे कि वर्षा पात जो है बहुत जिसको अनइवेन हो गया है, जिसके बारे में पहले से आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पिछले साल की मैं बात बताऊं कि पूरे वर्ष में नॉर्मल जो बारिश होती है 1180 उससे ज़्यादा बारिश हुआ है, लगभग जो है 1250 मिलीमीटर, लेकिन आप देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही असामान्य है। कहने का मतलब कि जुलाई में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ का रोपा, चूँकि धान किसान भाई ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें देखिएगा कि आप जो चूँकि जुलाई में सफिशियंट बारिश नहीं हुई जितना पडलिंग के लिए कदवा करने के लिए चाहिए, जब तक आपके खेतों में पानी जमा नहीं होगा तब तक आप कदवा नहीं कर सकते, तो जब कदवा नहीं कर सकते आपका समय पर आपकी धान की रोपाई नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे कि जुलाई में कम हो गया, अगस्त में कम हो गया, सितंबर में भी कम हो गया, लेकिन वहीं जून के महीने में जो है लगभग जो है 303 मिलीमीटर बारिश हुआ था। सोचिए जहाँ 157 मिलीमीटर नॉर्मल माना जाता है उसके अगेंस्ट जो है लगभग 2 गुना बारिश रिकॉर्ड किया गया है।
1: प्रश्न उठता है कि इसे दूर कैसे किया जाए, हमारे किसान भाई इस समस्या से निजात कैसे पाए?
0: इसमें किसान भाई 2-3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जो आपके पास मार्जिनल लैंड है, बेकार ज़मीन है, उर्वरा शक्ति जिसका बहुत ही कम है, जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे खेती के लिए, तो उस तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। उससे आप क्या कर सकते हैं कि जो ड्राईलैंड क्रॉप्स फ्रूट क्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि उसमें आपको ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती,

0: उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
1: जी
0: एक
1: जी
0: बार आपने पौधा लगा दिया, इसके बाद उसको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको जो है गड्ढा करके उसमें पौधा को लगाना है। इसके बाद जो बारिश के महीनों में जो 3 से 4 महीने होती है, उसमें वो सेट कर जाते हैं, पौधा जो है लग जाता है। इसके बाद आप उसमें आराम से जो है व्यावसायिक रूप से भी खेती कर सकते हैं, जैसे कि उसमें इस क्षेत्र के लिए हम बता रहे हैं कि जो उपयोगी फ्रूट क्रॉप्स हैं वो आंवला बहुत ही सूटेबल है इस एरिया के लिए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वैसे ज़मीन जो उर्वरा शक्ति कम है, जो उपयोग में नहीं ला रहे हैं, जिसको मार्जिनल लैंड बोलते हैं, उस वहाँ पर आंवला की खेती करें किसान भाई।
1: अच्छा,
0: इससे क्या होगा कि एक तो आपका जो है आंवला का जो उपज होता है, लगभग प्रति पेड़ जो है, जब वो 8 से 10 साल बाद जब उससे उपज आप प्राप्त करेंगे किसान भाई, तो 1 क्विंटल से ऊपर जो है एक पेड़ में उत्पादन मिलता है। आप सोचिए कि उसका जो है 20 से 25 रुपये प्रति किलो बिकता है, तो आप एक पेड़ से जो है 2500 से 3000 रुपये आराम से किसान भाई,
1: मतलब उस तरह की जो बंजर भूमि वहाँ पे वहाँ का पौधा लगा सकते हैं।
0: जी जी
1: जी,
0: सबसे है कि इसमें बहुत ही सूखा सहने की क्षमता होती है आंवला के पौधों में। और इसी बीच आप जो है खरीफ के मौसम में क्या कर सकते हैं कि दलहन का फसल ले सकते हैं। हमने तो अपने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में प्रयोग के दौरान पाया कि उसमें एरोबिक राइस, कहने का मतलब कि जैसे गेहूं की खेती करते हैं, वैसे ही 2 कतार जो आपका आंवला के पौधा आपने लगाया है उसके बीच 5 लाइन 7 लाइन, चूँकि आप जानते हैं कि 7 मीटर 8 मीटर जो है पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी रहती है, तो उसमें आप एरोबिक राइस, जैसे मैंने पहले बताया गेहूं की तरह उसका धान की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये करना है कि जो इस एरिया के लिए अनुशंसित किस्म है उसका किसान भाइयों को चयन करना पड़ेगा, जो ज़्यादा दिन की अवधि का नहीं हो। जैसे आजकल किसान जो हैं हाइब्रिड धान लगाते हैं, तो इसके लिए आपको जाना चाहिए वैसे प्रभेद की ओर जो इस एरिया के लिए उपयुक्त है, अनुशंसित है। तो उसमें सबसे पहले किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा PSE 807 जो है बहुत ही हाइब्रिड में उन्नत है, इसका उपज जो है आंवला के बगान में भी बहुत अच्छा पाया गया है। इसके बाद उसके बीच आप क्या कर सकते हैं कि उड़द की भी खेती कर सकते हैं किसान।
1: अच्छा,
0: है।
1: अच्छा।
0: उससे भी जो है अच्छा आमदनी प्राप्त होगा। और सबसे है बड़ी बात की जो है उसमें जो 2 पौधों के बीच, 2 लाइनों के बीच जो जमीन बच जाती है उसी में उसको सदुपयोग कर लेना है।
1: अच्छा,
0: अलग से उनको किसी जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें केवल बीज का आपको दाम लगेगा और जो खाद का दाम है उसका लगेगा, इसके अलावा उसमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ता है देने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप खेत की सेहत भी आपकी
1: बनी,
0: चूँकि आप चूँकि जानते हैं किसान भाई कि ये जो है दलहनी फसल है, तो इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो अपना ज़रूरत के हिसाब से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। उसमें थोड़ा सा स्टार्टर डोज के लिए प्रति कट्ठा जो है लगभग 300-400 ग्राम यूरिया का प्रयोग करते हैं, इसके अलावे जो है ज़्यादा यूरिया इसमें नहीं देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो 20 से 25 दिन के बाद जब पौधा हो जाता है तो उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, इसके बाद स्वतः जो है पौधा के जब तक हार्वेस्ट नहीं होता है तब तक वो अपना वृद्धि करते रहते हैं और अपना खुराक जो होता है वो स्वयं जो है, जो चूँकि हवा में नाइट्रोजन होता है उससे वो अपना खुराक बना लेते हैं। दूसरी बात कि जो पत्ती आपका झड़ेगा वो सारे आपके खेत में रहेंगे, वो सड़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि 2-4 साल 4 साल 5 साल बाद आपका जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी
1: बन जाएगी,
0: बढ़ेगी
1: जी।
0: और एक चीज़ और किसान भाइयों को इसमें बताना चाहते हैं कि आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में वैसे पौधों का भी, क्रॉप का भी चुनाव कर सकते हैं जो कि सूखा सहने की क्षमता जिसमें ज़्यादा हो। जैसे सैफ्लावर है, किसान भाई सैफ्लावर का भी खेती कर सकते हैं। केवल जो है

0: बुआई के समय उनको, ये चूँकि रबी के मौसम का फसल है तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि जब नमी है उसी समय इसका बुआई कर दें और इसके बाद कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी फसल है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि तिलहन का रकबा, हमको तिलहन का उत्पादन जो है बढ़ाना है। तो इस दिशा में जो है पलामू जो है बहुत ही प्रभावी रोल निभा सकता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे किसान भाई, जो धान की खेती करना चाहते हैं, जो रोपा धान करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँ कि हमारे क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी में दो किस्म जो है बहुत ही उन्नत प्रभेद है और अच्छा उपज देता है। लगभग आपको 50 से 60 किलो प्रति कट्ठा उपज दे सकता है। तो वैसे किस्म का चुनाव करें, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे केंद्र में जो उपलब्ध है बिरसा विकास धान 203 और IR64 DRT1, ये जो है बहुत अच्छा किस्म है। जब भी आप अपने खेतों में धान की बात करें तो ये किस्म आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं।
1: जी, इस प्रकार की विधियाँ अपना करके हमारे किसान भाई इस समस्या से निजात पा सकते हैं, शुष्क भूमि का विकास मतलब उसमें उत्पादन ले सकते हैं हमारे किसान भाई।
0: जी जी,
1: फसलों का चुनाव करना इसमें अहम हो जाता है।
0: जी जी जी,
1: आप थे पलामू जिला के कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश शाह। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और शुष्क भूमि विकास से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार किसान भाई।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश शाह से ली गई भेंटवार्ता। विषय था शुष्क भूमि विकास तकनीक और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोताओं, आइए जानते हैं नवजात बछड़ों की देखभाल। जी हाँ श्रोताओं, पशुपालन में नवजात बछड़ों की उचित देखभाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बछड़ा ही भविष्य का स्वस्थ और उत्पादक पशु बनता है। जन्म के पश्चात इसके कुछ प्रारंभिक सप्ताह बछड़ों के जीवन के सबसे संवेदनशील दिन माने जाते हैं। इस अवधि में उचित देखभाल, संतुलित आहार और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना जरूरी हो जाता है, तभी उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। श्रोताओं, बछड़ों के जन्म लेते ही उसके शरीर पर लगे जो भी म्यूकस हैं उन्हें साफ कपड़ों से पोंछ दें, जिससे कि वो आसानी से सांस ले सके। बछड़ा स्वयं सांस ना ले रहा हो तो उसकी नाक और मुंह की भी सफाई करें। ठंड के मौसम में उसे सूखे कपड़े से पोंछकर गर्म स्थान पर रखें। जन्म के पश्चात नाभि संक्रमण का एक प्रमुख माध्यम होता है श्रोताओं, इसलिए नाभि को 2 से 3 इंच लंबाई पर काटकर टिंचर आयोडीन या किसी कीटाणुनाशक घोल से अच्छे तरीके से साफ कर दे, इससे संक्रमण की जो संभावना है वह कम हो जाती है। और श्रोताओं, जन्म के तुरंत बाद 1 से 2 घंटे के भीतर बछड़े को माँ का पहला दूध यानी कि खीस जरूर पिलाएं, क्योंकि खीस में श्रोताओं प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और रोग प्रतिरोधक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जो बछड़ों को कई रोगों से बचाते हैं। जन्म के पहले दिन तक पर्याप्त मात्रा में खींच देना आवश्यक है। श्रोताओं, नवजात बछड़ों को हमेशा साफ, सूखे और हवादार स्थान पर रखें। बिछावन के लिए सूखा भूसा या पुआल भी बिछा सकते हैं। आवास ऐसा दे उन्हें जहाँ पर वर्षा, ठंड और तेज धूप से सुरक्षा मिल सके। गंदगी और नमी से श्रोताओं कई प्रकार के रोग फैल सकते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें ठंड, तेज धूप और वर्षा से बचाएं। और श्रोताओं, जब खीस की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो उसे नियमित रूप से दूध पिलाएं, क्योंकि धीरे धीरे बछड़े को आहार, हरा चारा और साफ पानी देना भी शुरू करें। संतुलित आहार से उसके शरीर की वृद्धि तेज होती है और भविष्य में भी वह स्वस्थ बना रहता है। श्रोताओं, नवजात बछड़ों में दस्त, नमोनिया और नाभि का संक्रमण फैलने की जो बीमारियां हैं वो प्रायः सामान्य होती है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी करें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर अपने जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क स्थापित करें और समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक दवा का जरूर प्रयोग में लाएं। बछड़े के वजन, भूख और उसकी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। श्रोताओं, यदि वह शुष्क दिखाई देता है, दूध पीना कम कर दे या दस्त की समस्या ज़्यादा हो तो उसे तुरंत उपचार कराएं।

नियमित स्वास्थ्य जांच से ही रोगों का समय पर पता चल सकता है और उसी के पश्चात आप समुचित देखभाल कर सकते हैं। सुधो बछड़े के रहने का स्थान, उसके बर्तनों और दूध पिलाने वाले जो भी उपकरण हैं उसकी नियमित रूप से सफाई करें। स्वच्छ वातावरण रोगों की रोकथाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें जिस बर्तन में दे, जिस उपकरण में दे, उसे भी स्वच्छ रखने का प्रयास करें। तो श्रोताओं, इस तरह से देखा जाए तो नवजात बछड़ों की समुचित तरीके से यदि हम उचित तरीके से देखभाल करें तो इनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जन्म के तुरंत बाद की देखभाल, खेस को पिलाएं, स्वच्छ आवास, संतुलित आहार और साफ पानी, और साथ ही साथ समय पर टीकाकरण, इन चीज़ों को जब हम करते हैं श्रोताओं तो निश्चित रूप से हमारे जो बछड़े हैं वह स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। स्वस्थ बछड़े ही भविष्य में अधिक उत्पादक पशु बनकर हमारे आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें नवजात बछड़ों की देखभाल, और अब इसी के साथ खेती बाड़ी से हम

जी हाँ, श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अपने आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से खेती बाड़ी का कार्यक्रम। और अब आइए सुनते हैं कृषि उत्पाद और ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। तो श्रोताओं, ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज के इस ग्रामीण सभा कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप सुनेंगे स्प्रिंकल सिंचाई से लाभ। आज का विचार का विषय है बकरी पालन से फायदे। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार से इससे लेकर भेंटवार्ता। विषय है कृषि वानिकी और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको श्रोताओं बताएंगे। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हुए जानते हैं स्प्रिंकल सिंचाई से लाभ। स्प्रिंकल सिंचाई आज के इस आधुनिक युग में एक सिंचाई का एक काफी प्रभावी पद्धति या प्रभावी तकनीक माना जाता है। श्रोताओं, इसमें पाइप और स्प्रिंकल, जिसे कि हम फव्वारा कहते हैं, इनकी सहायता से पानी को वर्षा के बूंद के समान खेत में समान रूप से छिड़का जाता है। यह जो प्रणाली है, जो सिस्टम है श्रोताओं, यह उन क्षेत्रों में काफी कारगर है जहां पानी की कमी हो, भूमि ऊंची नीची हो या पारंपरिक सिंचाई करना कठिन हो। आज के समय में देखा जा सकता हो तो जल संरक्षण और अधिक उत्पादन के लिए स्प्रिंकल सिंचाई का होना जरूरी है। श्रोताओं, इस स्प्रिंकल सिंचाई में मोटर या पंप की सहायता से पानी को पाइपों में दबाव के साथ प्रवाहित किया जाता है और पाइप के अंतिम सिरे पर लगे स्प्रिंकल पानी को चारों ओर महीन बूंदों के रूप में बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। श्रोताओं, इससे पूरे खेत में समान रूप से सिंचाई हो जाती है। स्प्रिंकल सिंचाई के कुछ लाभों की हम बात करें श्रोताओं, तो जब हम स्प्रिंकल सिंचाई का उपयोग करते हैं तो यह पारंपरिक सिंचाई की अपेक्षा 30 से 50 फीसदी तक श्रोताओं पानी की इसमें हमारी बचत हो जाती है। पानी केवल आवश्यकता के अनुसार ही दिया जाता है, साथ ही साथ जिसमें जल का जो भी हम पानी दे रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं होता है। इस स्प्रिंकल सिंचाई में खेत के प्रत्येक भाग में और समान मात्रा में श्रोताओं पानी पहुंचता है। इससे पौधों की समान वृद्धि भी होती है और फसल की गुणवत्ता भी जो है श्रोताओं काफी बेहतर होती चली जाती है। यदि खेत या जमीन या भूमि की हम बात करें, जब अगर ऊंची नीची हो तो वैसे स्थानों पर पारंपरिक तरीके से जब हम सिंचाई करते हैं तो नीचे वाले स्थानों में पानी की सिंचाई जो है ज़्यादा हो जाती है और ऊपर वाले जो स्थल रहते हैं, जो भूमि रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सिंचाई से वंचित हो जाते हैं श्रोताओं। लेकिन इस स्प्रिंकल सिंचाई में बिना भूमि को समतल किए या फिर जो भी उबड़ खाबड़ जमीन हो या ढलानदार जमीन हो वहां पर भी यह आसान

0: हो जाता है, क्योंकि जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो काफ़ी महीन या छोटे दाने होते हैं, छोटे पानी की बूंदें होती है। और सतहों इस स्प्रिंकल सिंचाई में एक बार पूरे खेत में लगाने के पश्चात यदि देखा जाए तो मानव श्रम की जरूरत भी प्रायः कम हो जाती है और एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जो है वो काफ़ी कम समय में हो जाती है। तो निश्चित रूप से इसमें जो मानव श्रम और समय दोनों की बचत हो जाती है। और साथ ही साथ श्रोताओं, हम इस स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली के साथ घुलनशील उर्वरक को भी पानी के साथ मिलाकर खेत में बिखेर सकते हैं और इसमें उर्वरकों का श्रोताओं समान रूप से वितरण होता है, तो इसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो देखा जाए श्रोताओं, तो जल के साथ साथ उर्वरक की भी हमारी इसमें बचत हो जाती है। जब हम स्प्रिंकल सिंचाई को अपनाते हैं श्रोताओं, तो खरपतवार भी काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं जगहों पर सिंचाई करते हैं या फवारा देते हैं जहाँ पर हमारे फसल लगे होते हैं। जहाँ पर हमारे फसल नहीं होते तो वहाँ पर हम इस स्प्रिंकल सिंचाई का उपयोग नहीं करते, तो निश्चित रूप से खरपतवार जो है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं, वहाँ पर कम ये उगते हैं। और पौधों को समय पर और उचित मात्रा में सिंचाई होने से, पानी मिलने से पौधों की भी वृद्धि काफ़ी अच्छी होती है और अच्छी होने के कारण इसकी उपज और गुणवत्ता श्रोताओं काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो निश्चित रूप से इससे हमें ज़्यादा उत्पादन की भी प्राप्ति होती है। स्प्रिंकल सिंचाई का उपयोग श्रोताओं हम अपने गेहूं, चना, सरसों, मक्का, मूंगफली, चारा फसलें, सब्जियां, फलदार पौधे या नर्सरी में सफलतापूर्वक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंकल सिंचाई में श्रोताओं जल भराव की समस्या भी नहीं हो पाती है, क्योंकि पानी जो है वो काफी नियंत्रित मात्रा में दिया जाता है। इससे खेत में जल भराव भी नहीं होती है और पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी श्रोताओं मिल पाता है। यदि हम इसके स्प्रिंकल सिंचाई के आर्थिक लाभ की बात करें श्रोताओं, तो सिंचाई की लागत में काफी कमी आ जाती है, पानी और बिजली की भी बचत हो जाती है। साथ ही साथ श्रोताओं, उत्पादन बढ़ने से हमारे किसान भाई हैं उनके आय में भी बढ़ोतरी होती है, श्रम लागत कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका भी हमें लाभ मिल पाता है। और कम पानी वाले क्षेत्रों में ये काफी लाभकारी है, यानी कि कम पानी में भी हमें भरपूर फसल का उत्पादन जो है श्रोताओं प्राप्त होता है। और पर्यावरण दृष्टि से भी देखा जाए तो भूजल का भी कहीं ना कहीं जो हमारे जो भूमिगत जल है उसका संरक्षण हो जाता है, मिट्टी की संरचना भी इसमें बेहतर होती है, जल और मिट्टी में प्रदूषण भी श्रोताओं कम होता है। तो देखा जाए श्रोताओं, तो स्प्रिंकल सिंचाई जो है वो काफ़ी लाभकारी और उपयोगी वैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली है। इसमें कुछ बातों का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। स्प्रिंकल के नोजल जो श्रोताओं होते हैं जिससे कि फवारा निकलते हैं जल की, तो उसके नोजल की नियमित रूप से रखरखाव हो, उसकी नियमित रूप से सफाई भी जरूरी है। इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि पाइप में किसी प्रकार से रिसाव ना हो। तेज हवा के समय सिंचाई से बचना है, तो इसके क्योंकि इससे जब तेज हवा चलती है तो पानी का जो वितरण है असमान तरीके से हो जाता है। और स्प्रिंकल सिंचाई श्रोताओं काफ़ी लाभकारी भी है, इसमें कम समय में ज़्यादा लाभ इस समय प्राप्त भी होता है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है श्रोताओं कि कम जल कम समय में हम अपने एक बड़े भूभाग जो खेत के जो क्षेत्र है हम वहाँ पर सिंचाई कर सकते हैं और इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो स्प्रिंकल सिंचाई श्रोताओं काफ़ी लाभकारी है, इसका उपयोग कर हम अपने जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इसी चर्चा के साथ आइए आपको हम सुनवाते हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता। विषय है कृषि वानिकी और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज वनों की अंधाधुंध कटाई से हमारी कृषि पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण बहुत सारी हानियां हमारे सामने आ रही हैं। वनों का संरक्षण नितांत आवश्यक है। जी हाँ किसान भाई, और कृषि वानिकी को हम अपनी खेती बाड़ी के साथ लेकर कैसे चलें जिससे हमें पर्यावरण प्रदूषण होने से भी हम बचा सकें।

0: और हमारी खेती भी फले फूले। आज कृषि वानिकी से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वानिकी विभाग के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। सर का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर। प्रथम तो हमारे किसान भाइयों को यह बताया जाए कि कृषि वानिकी क्या है।
1: किसान भाई, जहाँ तक कृषि वानिकी एक विषय आपको नया सा लग रहा है, लेकिन ये कोई नया विषय नहीं है। इसकी एक समुचित व्यवस्थित जो विज्ञान का रूप दिया गया है कृषि वानिकी, तो वानिकी वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्रीज का आपको खेती में समावेशित करना, तो यही है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब होता है कि जो परंपरागत वन भूमि है उसमें, उससे हट करके जो हम खेती कर रहे हैं, जो खेती योग्य भूमि है, उस पर हम वनों को कैसे हम समायोजित करके स्थान, जैसे स्पेस और टाइम, आपको दोनों का मतलब इसमें प्रबंधन का बेहतरीन तौर तरीके मतलब कि सुझाव का सुझाव है इसमें, और समावेश भी किया गया है। साथ साथ ये पर्यावरण तथा इससे होने वाले आर्थिक लाभ, ये दोनों का बहुत ही अच्छा सामंजस्य इसमें रखा गया है
0: जी। अब प्रश्न उठता है कि कृषि वानिकी के तहत हम किस पौधों का रोपण करें, कैसे हम कृषि वानिकी को खेती में समावेश करें।
1: किसान भाई, इसमें वन रोपण, खास करके पौधे को अपने जमीन, कृषि की योग्य भूमि पर लगाना, ये तो बड़ी संशय की बात है। लेकिन वनों की महत्ता, वनों की सीधे महत्व क्या है, उससे होने वाली हमारे कास्ट का जो लकड़ी प्राप्त होना, इमारती लकड़ी प्राप्त होना, जलावन की लकड़ी प्राप्त होना, साथ साथ चारा का जो उपलब्ध कराने वाला जो वन वृक्ष है उसको समाहित करना। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको फर्टिलाइजर प्लांट कहा जाता है, जैसे आपका शेषवैनिया, जो खास करके जिसका मतलब कि फूल मार्केट में 100-150 रुपये के जी तक मतलब बिकता है। हाँ, तो ऐसे अगर हम मतलब कि सीजनल, जो इसका आयु 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक मतलब रख सकते हैं खेतों पे, इसके पत्तियों से आपको मतलब कि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ साथ इससे प्रत्येक पेड़ से 10 से 12 केजी तक इसका फूल, जो बाज़ार में बहुत कीमती मतलब कि 100-150 रुपए किलो इसको बिकता ही है, तो ऐसे मतलब कि वन वृक्षों को समाहित करके, समावेशित करके आप कृषि की का जो खास करके इसके अंतराल, जहाँ तक बोले कि इसके अंतराल, तो मैं इसको बहुत सघन वनरोपण नहीं करूँगा, इसके 8-10 मीटर का जो अंतराल खेतों में रख करके, जिससे आपका हल ट्रैक्टर वगैरह आसानी से घूम सके, और दो कतार बीच में लगाएंगे, फिर 8 मीटर लगाएंगे, फिर दो कतार या एक कतार, जैसे मतलब कि आपकी सुविधा हो, लेकिन इसका रोपण पूरब से पश्चिम दिशा में करेंगे। ये वैसे भूमि का चयन करेंगे जो आपका कृषि लागत के अनुरूप आपका उससे आपका लाभ नहीं मिल रहा है, तो वैसे भूमि का चयन करें, ऊपरी भूमि का, अपलैंड्स का चयन करें। अगर ऐसे पद्धति आप 4-5 साल खेतों पर रखते हैं, 7 साल 8 साल, तो खेतों की जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी।
0: अब प्रश्न उठता है कि इसको हमारे किसान भाई लगाएंगे कैसे।
1: हाँ, इसको लगाने का बात है किसान भाई, जिसकी मैं हल्की सी चर्चा पहले ही कर दिया, तो इसमें लगाने का क्या है कि जैसे इसमें लगाने के लिए काष्ठीय लगाना चाहते हैं, तो उसमें सागवान, पलामू की भूमि में खास करके पलामू, गढ़वा, लातेहार, ऐसे मतलब क्षेत्रों के लिए आपका सागवान जो है काफ़ी किसानों का पसंदीदा मतलब पौधा है, तो इसको 2-2 मीटर, है ना, पौधे से पौधे का जो कतार 2-2 मीटर, यानी कि 7.5 फीट, लगभग 7.25 फीट, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप मतलब रख करके, और जो पौधों का चुनाव करेंगे इसमें बराबर बराबर ऊंचाई, बराबर मोटाई का जो जो सीडलिंग का पौधा नर्सरी से चयनित करके लगाएंगे, और 2-2 मीटर अंतराल पर लगाना है। 3 साल बेहतर इसका देखभाल करिए, इसके बाद आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे साल जो ऊपरी जो पत्ते हैं उसका 1/3 भाग हर दूसरे साल नीचे से तेज धारदार चाकू से या कुछ ऐसे तेज धार हथियार, सिकाइटियर वगैरह से आप उसकी शाखाओं को काटते रहें, जिससे कि कृषि फसलें जो 8-7 मीटर का जो स्पेस दे रहे हैं दो कतार के बीच, उसमें जो कृषि फसल लगा रहे हैं उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पेड़ का नहीं पड़े। इसलिए इसको कतार की जो पौधे से पौधे की दूरी जो रखेंगे 2 मीटर, और कतार से कतार की दूरी जो है रखेंगे।

0: 9 मीटर 10 मीटर तक रख सकते, जिससे आप 10 साल 12 साल तक आपको बड़े मजे से, मतलब कि इसके जो 12 मीटर 8 मीटर 7 मीटर 9 मीटर जो भी रखते हैं सुविधाजनक, उस स्पेस में आप खेती कर सकें। आप ट्रैक्टर भी घूम जाएगा, हल भी चलेगा बढ़िया से। तो किसान भाई, इसको जहाँ तक मतलब कि सवाल है आपका चारा का, फसल का, तो चारे के फसलों को मैं सुझाव देता हूँ कि वो आपका पगडंडियों पर लगाए, वो खेत में समाहित न करें, पगडंडियों के चारों तरफ मतलब लगा दें। प्रत्येक साल उससे मतलब कि पत्ते काट करके, जब आपके हरी घास कहीं ना मिले, तब इसके हरे पत्ते को अपने जानवर, बकरियों, बैल, भैंस, गाय, सभी को मतलब कि आप खिला सकते हैं।
1: तो इसका मतलब है कि हमारे किसान भाई लोग ये जो काष्ठीय वृक्ष जो लगाएंगे, साथ साथ में अंतर्वर्ती खेती भी कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा से, और अगर ऐसा करेंगे और इसे अगर कुल लाभ देखा जाए, तो आपको जो सोल खेती, जो एकल फसल लेते हैं साल में, उससे आपको कम से कम 2 से 2.5 गुना मतलब कि फायदा आपको मिलेगा। अगर इसके सभी अभी का कीमत अगर आंकते हैं, तब निश्चित तौर पर इसे जो एकल खेती करते हैं, उससे आपको कृषि वानिकी पद्धति से जो आय होगी वो निश्चित तौर पर ज्यादा होगी।
1: अच्छा, आपने पलामू के कई गांवों का भ्रमण किया है, आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं काष्ठिया में। एक तो सागवान की बात हमने की, और कौन कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं?
0: पलामू की खासकर के किसान भाई, जो जलवायु है वो थोड़ा शुष्क टाइप का है, यहाँ 7-8 महीने जो है शुष्क टाइप का जलवायु रहता है, ये स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हमारे मतलब खासकर के ऐसे भूभाग में सागवान का पौधा चयन करें, बढ़िया। और दूसरा है, यहाँ खैर बहुत अच्छा होता है बगैर कोई विशेष परेशानी का, तो खैर के पौधा, वो भी इकोनॉमिकल पौधा है, उसका घर अगर 18-20 साल 22 साल अगर खेतों में रह गया, तो प्रत्येक पौधा से 1,000 रुपया 1,500 रुपया 2,000 रुपये आपको उसे कत्था के रूप में मतलब कि जो है एक्सट्रैक्शन अगर बड़े पैमाने पर किसान सामूहिक रूप से करते हैं, तो इसको बेच करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, बांस का खेती भी मतलब कि करें, और जैसा कि मैं बताया कि अगस्त का पौधा, जिसका कि फूल बाजार में आपको 125-150 रुपये किलो बिकते हैं, तो ऐसे पौधे का 2 कतार 8 मीटर के अंतराल पर दो दो कतार मतलब लगा दीजिए, 3-3 मीटर जो पेड़ों का कतार होगा, दो पौधे का कतार, दो कतारों के बीच पेड़ के लिए वो 3 मीटर रखिए, 2 मीटर ने 3 मीटर, और जो खेती वाला कतार रहेगा वो 7 से 8 मीटर रखिए। ऐसे अगर करेंगे तो आपको प्रति हेक्टेयर निश्चित तौर पर आपको इसे 25 से लेकर के 30 हज़ार रुपये आपको आमदनी मतलब मिलेगी, जो कि आपको खासकर के यहाँ के ऊपरी भाग से जो होने वाली आमदनी है
1: जी।
0: उसके बराबर लगभग है। तो
1: और इससे छुट्टी और कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कृषि वानिकी से?
0: कृषि वानिकी खासकर के मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं कि पलामू की धरती खासकर के ऊपरी भूमि का सवाल जहाँ तक है, मैं उसकी प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, चूँकि यहाँ का ढलान लिए हुए ऊपरी भूमि है। ऐसे भूमि में ढलान के खिलाफ, जो ढलान के खिलाफ अगर आप मतलब वनस्पतियों को समाहित करते हैं, खास करके शू बबूल या टेफ्रोसिया जैसे पौधों को लगाते हैं, जो कि फर्टिलाइजर प्लांट कहा जाता है, तो ऐसे पौधे का अगर आप समाविष्ट करके और ढलान के खिलाफ 6 मीटर 7 मीटर अंतराल पर अगर मतलब कि ढलान के जो स्लोप है उसके अगेंस्ट में अगर इसको लगाते हैं सीरीज में,
1: जी
0: तो इसकी उर्वरा शक्ति आपकी भूमि की बनी रहेगी, और उसमें जो उत्पादन लेते हैं उसका उत्पादन में भी 1.5 से 2 गुना मतलब कि आप प्राप्त करेंगे दूसरे तीसरे साल से। तो बहुत अच्छा तकनीक है, इससे न केवल मतलब कि भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होगा, बल्कि जानवरों के लिए चारा का फसल, जैसे सुबबूल एक अच्छा चारा का फसल है, वो प्राप्त होगा, और टेफ्रोसिया है तो उसे जलावन की लकड़ी मिलेगी प्रत्येक वर्ष, तो एक अच्छा मतलब की साधन होगा, और साथ साथ खेतों की उर्वरा शक्ति, उसके पत्ते बहुत आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और उर्वरा शक्ति भूमि के बढ़ाने में काफ़ी योगदान करते हैं।
1: जी, हम अगर यदि ये बात कर लें कि कृषि वानिकी हमारे किसान भाई लोग अगर यदि अपना रहे हैं, तो कौन कौन सी फसल ले सकते हैं अंतर्वर्ती में उसका?
0: फसल का चुनाव तो किसान भाई निर्भर करेगा कि कैसा भूमि आप लेते हैं। ऊपरी भूमि के लिए खास करके मतलब कि पलामू के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो है यहाँ अगर वर्षा अधिकतर खेती वर्षा आश्रित होती है, तो ऐसे में जो है तिल का फसल, जो खास करके जो भी खरीफ में तिल का
1: अच्छा।
0: फसल, और रबी में अगर ये जो स्लोप के अगेंस्ट में, जैसा कि मतलब ढला

0: के खिलाफ अगर मतलब उस तरह का कतार बना लिए हैं, तो आप अगर एक पानी की व्यवस्था रखते हैं तो ऐसे स्थिति में आप मतलब तीसी हो गया और चना हो गया, मसूर हो गया की खेती कर सकते हैं। और अगर एक से अधिक मतलब की पानी की व्यवस्था हो तो सरसों की खेती कर सकते हैं। और अगर एक भी बूंद पानी ना हो तो यहाँ वो एक कुसुम की खेती बहुत
1: वाह,
0: सफलतापूर्वक
1: बहुत
0: कर
1: सुंदर
0: सकते हैं।
1: जी हाँ। आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। आपने आज कृषि वानिकी से संबंधित विस्तृत जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।

डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता। विषय था कृषि वानिकी और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए जानते हैं बकरी पालन से फायदे। श्रोताओं, शहर हो या गांव, दोनों जगहों पर आय बढ़ाने का एक सरल, लाभदायक और कम लागत वाला व्यापार है। और आज के समय में देखा जाए तो बकरी पालन करना काफी लाभकारी है और इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि यह कम पूंजी में इसका सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। और बकरी की जो मांग है वो मांस, दूध और जैविक खाद के कारण लगातार इसका जो महत्व है वो बढ़ते चला जा रहा है। बकरी पालन के फायदे के बारे में जब हम बात करते हैं श्रोताओं, तो बकरी के दूध, मांस, बच्चा या गोबर की बिक्री से नियमित रूप से आय की प्राप्ति होती है। अगर देखा जाए तो त्यौहार और विवाह के समय बकरी की अच्छी खासी कीमत भी मिल जाती है और यह कम निवेश में शुरू करने वाला काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। और इसे हमारे जो भी छोटे या सीमांत किसान हैं वो इसे बड़े ही आसानी से प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ बकरी का जो दूध होता है वो काफ़ी पौष्टिक और सुपाच्य होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम के साथ साथ अन्य कई पोषक तत्व तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं श्रोताओं। तो ऐसी स्थिति में इसके पौष्टिक दूध की भी मांग बनी रहती है और मांस की तो मांग तो वर्ष पूरे वर्ष बनी ही रहती है श्रोताओं। और बकरी में जो एक अच्छी खासियत है कि बकरी बहुत जल्द ही प्रजनन करती है, एक बार में 1 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इससे पशुओं की संख्या जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ती है और इससे कहीं ना कहीं आय में बढ़ोतरी होती है। बकरी पालन के लिए बहुत ज़्यादा भूमि की भी जरूरत नहीं पड़ती है श्रोताओं। छोटे से बेड या सीमित जो भी स्थान है वहाँ पर इसे हम सफलतापूर्वक पाल सकते हैं। बकरी पालन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियाँ, झाड़ियाँ, घास या जो भी कृषि के जो अवशेष जो बचते हैं उन्हीं चारों से इनका काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चारे पर जो होने वाला खर्च है वो भी बचत है इसमें और खर्च भी कम हो जाता है श्रोताओं। और बकरी का जो गोबर है वो काफ़ी जैविक खाद के रूप में जाना जाता है, काफ़ी उत्तम समझा जाता है और इससे खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में यह जो गोबर है वो काफ़ी कारगर साबित होती है। और इससे खेती में रासायनिक उर्वरकता पर जो निर्भरता है वह कम होती है। जी हाँ श्रोताओं, यदि आप बकरी का गोबर का उपयोग आप अपने खेतों में करते हैं तो देखेंगे कि आपको रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रायः कम करना पड़ता है या न के बराबर आपको करना पड़ जाए। बकरी पालन हमारे ग्रामीण युवा के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारी और स्वयं सहायता समूह के लिए भी ये काफ़ी अच्छा स्वरोजगार का माध्यम या साधन माना जाता है। और जब इसके लोग पालते हैं तो निश्चित रूप से परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति जो होता वो काफ़ी मजबूत होती है। बकरी पालन कम लागत, कम जोखिम और अधिक लाभ देने वाला एक व्यापार है। और हमारे जो भी ग्रामीण किसान भाई बहन हैं वो इसका जरूर पालन करें, क्योंकि यह आपके परिवार की आय को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन किया जाए, समय पर टीकाकरण, संतुलित आहार और उचित प्रबंधन अगर आप अपनाते हैं, ये काफ़ी लाभकारी और टिकाऊ आपके लिए यह बकरी पालन साबित हो सकता है। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें बकरी पालन से फायदे। और चलते चलते आपको हम बता दें डाल्टनगंज का आज का तापमान।

जा सकता हूँ। अल्टरगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता का प्रतिशत 63 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं ये तो थी बातें हमारे आज के ग्रामीण सभा की, और इसी के साथ अब आज के इस ग्रामीण सभा से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिन का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने पर्यटन नीति 2026 और होमस्टे नीति के माध्यम से धार्मिक, इको, साहसिक और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने निवेशकों से झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन और रोजगार सृजन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए2 की संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के विरुद्ध निलंबन सहित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा 14 जुलाई को सभी बूथों पर बीएलओ बीएलए2 बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि समीक्षा के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान तेज करने, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
1: डीजी मैडम की अध्यक्षता में आज सभी जिले का जो परफॉर्मेंस है क्राइम और नक्सल सिनेरियो पे, उस पे विशेष रूप से चर्चा की गई और जो नक्सल अभियान तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनेरियो है उसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और विगत कुछ महीनों में काफी सारे ऑपरेशंस

0: उन लोगों ने यहाँ पे किया है, जिसके वजह से नक्सल का स्ट्रेंथ अभी काफी कम हो गया है और आने वाले समय में वो तो बचे हुए ग्रुप्स के ऊपर हम लोगों की तरफ से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
1: बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
2: जितने संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हैं, उन सबको शोकॉज पूछा गया है और शोकॉज पूछने के उपरांत अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो उस पर अग्रतर कार्रवाई होगी। अभी देखते चल रहे, आगे आगे और भी कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहें, विभाग गंभीर है और गंभीरता के साथ दोषियों पर कार्रवाई करेगी।
1: धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 वर्ष बाद अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 में बीसीसीएल आवासों से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची की टीम ने बुढ़मो अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को म्यूटेशन की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। परिवादी सुबोध कुमार ने एसीबी से रिश्वत लिए जाने की शिकायत की थी। जांच में यह मामला सही पाया गया। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताराटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि आरोपी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर और एपीके फाइल भेजकर लोगों से ठगी करते थे।
3: साइबर क्रिमिनल्स टीम है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था और उस टीम ने छापामारी की और उसमें 5 लोग थे। लोग के पास से 10 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। कई एपीके फाइल भेज करके इनके द्वारा लोगों से साइबर ठगी किया जा रहा था।
1: जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में एक और आरोपी राहुल दुबे ने आज बिष्टुपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है।
4: पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, इनका जो एक मिलजुल के सहयोगपूर्ण कार्यक्रम स्पीडी ट्रायल करना और उसके माध्यम से उन लोगों पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब ये प्रयास करते हैं कि वो या तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से संदेश है सभी लोगों को कि अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई है उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे।
1: गिरिडीह की विशेष एनडीपीएस अदालत ने वर्ष 2010 में दर्ज अवैध अफीम की खेती और तस्करी से जुड़े मामले में 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह मामला लुकैया नयनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जिसमें 29 लोगों पर अवैध रूप से अफीम की खेती और कारोबार करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं कर सका। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां चन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मां को 56 प्रकार के व्यंजन और ऋतु फल अर्पित कर राज्य तथा देश की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाली इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है।
5: आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जोगिनी एकादशी है। बहुत ही तिथि महत्वपूर्ण है और गर्मी का समय खत्म हो गया।

0: बरसात ऋतु चालू हो चुका है ताकि आसपास क्षेत्र में अच्छे से फसल हो, खेती हो, भरपूर रहे, आनंद रहे। और ये तो जागृत देवी है कि माँ हर मनोकामना भक्त को पूरा करती है।
1: झारखंड की अंडर 18 बालक रग्बी टीम जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। यह प्रतियोगिता गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित हो रही है। टीम की कप्तानी अजीत नाग कर रहे हैं, जबकि सलमान भेंगरा कोच और किशन उराव टीम मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिनों का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद बताया कि 60% फॉर्म वितरित कर दिया गया है और बीएलओ घर घर जाकर लोगों को फॉर्म पहुंचा रहे हैं। डीसी ने गांडे क्षेत्र के कई बूथों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग पक्का मकान पाकर बेहद खुश हैं।
2: मेरा नाम रजिया खातून है, दाढ़ी ढूंढ रख है। दिक्कत तो सर मिट्टी का घर तो परेशानी था, अब अपने बाल बच्चों के साथ में अभी हम बहुत खुश हैं। जो सरकार का धन्यवाद करते हैं, अब हमको पक्का का घर मिल गया है।
1: गिरिडीह जिले के पंचायतों के रख रखाव के लिए मिली राशि को मुखिया द्वारा खर्च नहीं किए जाने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष का 3,14,00,000 रुपया खर्च नहीं हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में भी 1,55,00,000 रुपये का आवंटन प्राप्त हो गया है।
3: गिरिडीह जिला के 344 पंचायतों के 6 पंचायत सचिवों को खर्च करने के लिए सुदृढ़ीकरण की राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दी गई थी, लेकिन मुखियाओं के द्वारा अभी तक 3,14,00,000 रुपया अभी तक खर्च नहीं किए हैं, जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी उनके लिए सुदृढ़ीकरण मद में राशि आ गई है। उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना था, हम लोगों ने मांग की थी, अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उनके द्वारा जमा नहीं की गई है। वर्तमान में जो राशि आई है इस वित्तीय वर्ष की, उस राशि को हम लोग तभी उन मुखियाओं को देंगे जो मुखिया पिछले वित्तीय वर्ष की सुदृढ़ीकरण मद में जो राशि आई थी उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे, और साथ ही जो मुखिया खर्च नहीं किए हैं उनके विरुद्ध कारण पीछा भी करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि किस कारण से किस परिस्थिति में उस राशि को उन्होंने खर्च नहीं की।
1: मनरेगा योजना से किसानों ने आम बागवानी लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। गिरिडीह जिले के पीरटाड़ के किसान कहते हैं कि उन्हें आम बेचकर अच्छा फायदा हुआ है।
4: शेखर महतो है, पीरटाड़ प्रखंड ग्राम बांध का ये हमारा गांव है। प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को पता चला कि नरेगा से

0: सरकार मुफ्त में आपको 3 से 4 लाख रुपया पैसा भी एक एकड़ में देती है, और मैंने आपका मैंने एक स्वामित्व भी हो जाता है बागवानी में, आप खुद उसका ओनर भी हो गए बागवानी का। तो इस जानकारी मिला और किसी माध्यम से हमको 2 एकड़ 2.5 एकड़ में मैंने को बागवानी करने का मौका मिला, और मैंने जो एकदम बंजर भूमि था, जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए, और बागवानी मेरा मैंने इतना शानदार रहा कि हम लोग तो लगभग 50,000 का अभी तक आम बेच चुके हैं, और कम से कम 2 लाख 2.5 लाख तक और आम बेचेंगे।
1: जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों से आग्रह किया है कि बरसापात के अभाव में मोटे अनाज के साथ साथ दलहन एवं तेलहन की खेती करें। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
2: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रशासन सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:16 और 19 सेकंड हो चुके। हम लेकर हाजिर हैं कुछ ही पलों में फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

सुन रहे फिल्म संगीतकार कार्यक्रम एक रंग। सोनू निगम, श्रद्धा पंडित की आवाज में आपने सुना फिल्म संघर्ष के इस खूबसूरत से नगमे को, समीर के बोल, जतिन ललित के संगीत। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज, लता मंगेशकर की आवाज में, अमर उत्पल के संगीत है, आनंद बख्शी के बोल। फिल्म का नाम है शहंशाह।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपने सुना फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म के गाने को उदित नारायण की आवाज में समीर के

आपने सुना फिल्म प्यासा के इस गाने को उदित नारायण का याग्निक की आवाज में परवीन भारद्वाज के बोलते डब्बू मलिक के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग और आइए सुनते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:45 हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं रोजगार से जुड़ी बातों से संबंधित कार्यक्रम उड़ान संकलन निर्वाचन मीनाक्षी करण के। बस कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हम इस गाने इस कार्यक्रम को।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम उड़ान।
1: कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आपसे बातें करेंगे मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर, इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाहे सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम

कार्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में MBA जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं जैसे कि B Pharma यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। B Pharma स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए M Pharma कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का Pharm D पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक BA, MA, BSc, MSc कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय MPhil एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो MBBS के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार MBBS नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ
उत्कृष्ट

0: श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरामेडिकल विज्ञान, और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं, जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से, और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं, और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं, और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की MBBS के अलावे मेडिकल के क्षेत्र में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाजत। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, रोजगार से जुड़ी बातें। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण के थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। कुछ ही पलों में रात्रि 8 बजे हम लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं भाई, समय हो चला है सुनने का महफिल कवाली नगमों का कार्यक्रम। आज के फनकार है नुसरत फलते अली खान। खुशी पलों में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम महफिल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महफिल कवाली नगमों का कार्यक्रम, फनकार हैं नुसरत फतेह अली का। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रात्रि 8:45 पर कुछ ही पलों में जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली के उनके प्रसारण से, जहां सुनेंगे हिंदी में समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर विविध भारती की प्रसारण सेवा सुनेंगे आज के फनकार। रात्रि 10 बजे अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार, और अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, कुछ ही थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्म

0: जोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
1: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
2: Pineapple Festival का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से सकेंगे।
1: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया।

0: चमक, आसमानी बिजली और तेज झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिन भर अब्र आलूद मौसम के साथ ज्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सौम्या शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेंबरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेंबरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ, जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उज्रदारियों की समाअत करेगी, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को एक रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज BJP ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेज ने शिरकत की, ताकि मुस्तकबिल के सहेली गार्ड्स प्लेटफॉर्म्स पर गौर खौस किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2 के मुकाबले 0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई, जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हममनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलों पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़रा मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारी का जायजा लिया और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बर्तानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आए

असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

सियासत भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, इस बात की जीती जागती मिसाल है असद भोपाली साहब की कैफियत। 1949 के आसपास वो मुंबई आए थे। देश एक नई करवट ले रहा था, हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। कई कलाकार, फनकार, संगीतकार और गीतकार अपनी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह लिए हुए थे। अगर गीतकारों की ही बात करें तो मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र किशन जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और SF हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

0: 9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।
1: जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती की प्रसारण सेवा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। तो बने रहे हमारे साथ अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा में। बस कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं फिल्मी गीतों का ये सफ़र।

अभी आपने सुना फिल्म जब प्यार किसी से होता है, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के बोल हसरत जयपुरी के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म प्रेम पुजारी के इस गाने को। किशोर कुमार की आवाज़ में एस डी बर्मन के संगीत, नीरज के बोल थे।

फिल्म सौदागर, गीत संगीत रविंद्र जैन के और गाने में आवाज़ थी आशा भोसले की। आशा भोसले की, श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा।

तेरे घर के सामने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, एस डी बर्मन के संगीत हसरत जयपुरी के बोल, आपने इस गाने को सुना। और अब आइए सुनते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका के इस गाने को उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आनंद मिलिंद के संगीत है मजरू सुल्तानपुरी के बोल।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। भी आपने सुना फिल्म वारंट के इस गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में आर डी बर्मन के संगीत आनंद बख्शी के बोल थे।

आप सुन रहे हैं रेडियो सम, रेडियो FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह कार्यक्रम रजनीगंधा फिल्म संगीत का ये सफ़र 10:48 और 44 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। कुछ पल और है, इसे सजाते हैं, बस कुछ ही पल में लौट के आते हैं।

आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के इस गाने को, किशोर कुमार की आवाज में बप्पी लहरी के संगीत हैं इंदिवर के बोल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज से 103 MHz पर प्रेम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना प्रेम प्रतिज्ञा के इस गाने को, भाई सुनते हैं चलते चलते यानी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश कुदरत के इस गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन के संगीत। और इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से हमें दीजिए इजाज़त। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे

0: प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकेंगे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
3: We will be building on the things that we've already worked on. So free trade agreement is signed, but it has to be ratified, and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So there are many, many aspects of it, including maritime security as well.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defense, and cyber and AI domains. The two leaders also held a comprehensive exchange of views on developments in the Gulf and efforts to ensure peace and stability in the region. Dr. Jaishankar highlighted that the discussions reflected the trust and strength of strategic partnership between India and Oman. Meanwhile, the Omani foreign minister said that the long-standing maritime ties between India and Oman have connected their people for centuries and continue to provide a strong foundation for the partnership between the two countries. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. In a social media post, Mr. Meghwal said, a comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. Indian Railways has approved 206 crore rupees for coverage deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of coverage version 4.0 will be implemented on the Rewari Delhi and Shakur Basti Bathinda sections of Delhi Division. The system has been designed to significantly enhance railway safety by preventing signal passed at danger incidents and train collisions. The ministry said the system continuously monitors train movements, automatically applies brakes whenever necessary, permits trains to operate safely at maximum permissible speeds. It also supports reliable train operations even during adverse weather conditions such as dense fog. In football, Spain will face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. France has already stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston. In Wimbledon tennis, Germany's Alexander Zverev stormed into men's singles final beating British wildcard Arthur Ferry in the semi-final this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
4: श्रोताओं अभी आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में।

अभी आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में।